मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की तिथि 24वीं, तदनुसार 15 जुलाई 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये भक्ति संगीत।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन यशपाल सिंह राठौड़ से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान।
1: श्रीमद् भगवद गीता एक पावन, अनुपम और ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें सभी भारतीय दर्शन, सभी उपनिषद, संस्कृति, जीवन मूल्यों एवं योग की सभी विधाओं का सार निहित है। भारत के प्रत्येक मनीषी ने गीता की अपने अपने ढंग से श्रेष्ठ व्याख्या की है। आद्य शंकराचार्य ने गीता भाष्य की रचना की, आचार्य रामानुज ने भी गीता भाष्य लिखा, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में ज्ञानेश्वरी, श्रीधर स्वामी ने सुबोधिनी टीका, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग, राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी भी उच्च कोटि की टीकाएं हैं। तात्पर्य यह है कि मद भगवत गीता भारत के मानस में, जन जन के हृदय में रची बसी हुई है। गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। श्री कृष्ण उस काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और अर्जुन भी उच्च कोटि के महावीर थे, इसलिए ये पावन ग्रंथ दो श्रेष्ठतम वीरों के मध्य का संवाद है। वस्तुतः गीता कर्म क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया जो उपदेश था, इसी उपदेश ने भगवत गीता का रूप लिया, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। एक प्रसंग के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखकर मोहग्रस्त हो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराया। तब जाकर अर्जुन ने स्वधर्म को समझा और अपने कर्तव्य का पालन किया। सामान्य जीवन में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। जीवन की विषमताओं से जूझते हुए तनाव, अवसाद, निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं, अधर्म को स्वीकारने लगते हैं, प्रियजनों के मिथ्या मोह में अनिति का साथ देने लगते हैं। ऐसी दशा में गीता का ये पावन अनूठा ग्रंथ हमें बोध कराता है कि हम अपने धर्म के पथ से भटके नहीं, अपने स्वधर्म का पालन करें, सतत निष्काम भाव से कर्म से जुड़े रहें। गीता अपने आप में ऐसा एक संपूर्ण धार्मिक ग्रंथ रत्न है, जिसको भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैव मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है, अर्थात मुझ में मन को लगा, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। गीता में मानव जाति के लिए जो संदेश दिया जाता है वह सबके लिए समान है, शाश्वत है। इसके अलावा इसमें कई विद्याओं का उल्लेख है, जिसमें 4 प्रमुख हैं। अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है, साम्य विद्या ईर्ष्या द्वेष को मुक्त कर समता भाव पैदा करती है, ईश्वर विद्या के प्रभाव से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, और ब्रह्म विद्या से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में भगवत कृपा की अनुभूति करता है। गीता में जगह जगह अर्जुन अपनी समस्याएं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। श्री कृष्ण बड़ी सहजता से उन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अतः मद भगवत गीता ज्ञान है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है, नीति शास्त्र है, योग है, जीवन मूल्य है, समाज शास्त्र है। गीता का संपूर्ण ज्ञान और मनन मानव जीवन का पावन गान है।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन यशपाल सिंह राठौड़ से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय रहेगा बीजोपचार के लाभ। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 305। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बने, परिवार को दें रविवार यानी अवकाश का दिन और उस्ताद योजना। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। और मंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, आज कलाकार होंगे मणिराम राठौड़। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कुछ युगल गीत फिल्म संगीत में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गज़लें दिन के 12:30 पर। दिन के 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती हर किसान की ज़रूरत। दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे विश्व युवा कौशल दिवस, पद्मश्री से सम्मानित स्वामी ब्रह्मदेव, पौधों को कीट से बचाने की उपयोगी टिप्स और नानी का घर और कुछ बातें। प्रस्तुत करता होंगी अलका वर्मा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन के 2:30 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद। इसके अलावा आज का इतिहास सिराइकी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पत्रोत्तर, व्हाट्सएप, ईमेल व पत्रों पर आधारित कार्यक्रम। इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चंद गज़लें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मन भवन। इस कार्यक्रम के निर्देशक व संयोजक हैं नवीन सिसोदिया। प्रस्तुत करता होंगी स्मिति बोहरा।

0: अलभत इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200

0: Bulletin.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय है बीजोपचार के लाभ।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आप भांत भांत की फसलां बीजा सावणी में, हाड़ी में और जायद में। तो जिकी भी आप फसलां बीजा मांगो, अपने बीजोपचार देखो करना चाहिए। बीजोपचार आप हरेक फसल को करा तो भी अपने लाभ है जगह अच्छा मिल सके। तो मोटी सी बात ये है कि जिक भी आप फसल को उत्पादन लेवा तो भी वो बीज है जो एक महंगो उत्पाद हो। फसल उत्पादन के कुल खर्चे में से 20-30% ती एक लो बीज पर ही खर्च हो जाए। और इंग साग सागे अच्छो और स्वस्थ फसल आपने प्राप्त करने खातर बीजा ने कीटा और व्याज से दूर रखना बहुत जरूरी है। जबकि शू कह के बीज बीजने से पहले आपने उपचारित करना चाहिए। जितना भी आपने किसान भाई जका बिजाई करे सावणी में, हाड़ी में और इंग साग सागे जायद में, तो जब तक अनुमान वही है अपने के भी 70% तक किसान है जका बीजोपचार या कह सकता भी करे भी कोने आप। और 20-30% तक जकी निजी संस्था है बांशू या सार्वजनिक संस्था से ज्यादातर भाई जो को बीज खरीदे और वो बिना उपचारित करो बीज हो है। तो अपने देश में यह कह सभी अनुमान वही है कि लगभग 80% बीज है जो बिना उपचारित करे ही किसान भाई लोग जका बिजाई करे। जका विकसित देशों की तुलना करा तो भी मैं 100% तई किसान है जका मांगा उपचारित करेड़ा बीज है जो बीजे। तो बीज उपचार करने से बीज की मृदा और बीज जनित व्याधियां से रक्षा तो करे ही करे। इंगे अलावा अंकुरित पौधे की शुरुआत की बढ़वार में रस चूसने वाले कीड़ा से भी रक्षा करे। फिर भी किसान है जका अपने बीज उपचारित करे को नहीं तो माने बीज उपचार से जो करना। किसान भाई, बात अब बीज उपचार करने को उद्देश्य है। बीज उपचार को उद्देश्य न केवल बीज और मृदा जनित कीटाशु या व्याधियाशु बांगी रोकथाम करनो है, बल्कि जीवित परंतु सुप्त जीवाणुओं के लेप करण खातर वो अपने प्रयोग है जको करनो पड़े। जको बीज अंकुरण के बाद अंकुरित बीज ने एक स्वस्थ और ओज पूर्ण विकसित पौधे के खातर नाइट्रोजन का भी ने भरपूर मात्रा में मिले। जैके शू कह के बूंटो अच्छो स्वस्थ हो सी और भी पर फूल है फल है जका चोखा लगेगा और अपनी फसल को उत्पादन है जगह में बढ़ोतरी होगी। तो बीज उपचार को वो मोटो सो उद्देश्य है। बीज उपचार के लाभ की बात करा तो बीजा को अंकुरण प्रतिशत जको बढ़ जाएगो और अंकुरित बीज में समरूपता भी आ जाएगी। फसल ने मरदा एर बीज नित कीड़ा और व्याधियां शू जको है बचाव हो जाएगो। दलहनी फसलों के बीजा ने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता और उत्पादकता में बढ़वार हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वस्थ और एक सार विकास है जो को बुंटे गोवेगो। उन्नत पादप संख्या जो की बढ़ जाएगी जैके शू फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। एर सागे सागे बुंटो स्वस्थ और पूर्ण विकसित बुंटे की जड़ा जकी होगी। उपचारित बीज बीजने से कीटनाशी और फफूंदनाशी की स्प्रे जकी कम हो जाएगी, जैके शू फसल उत्पादन पर खर्चो जको की कम हो जाएगो। पौधांगे खातर लाभदायक कीटा की भी रक्षा जकी हो जाएगी। तो इंगे अलावा फसलों की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करने और फसलों पर कीड़ा और बीमारियों को प्रकोप कम से कम होगा। इन उद्देश्य से बिजाई से पहला अपने 100% बीजोपचार करना बहुत ही जरूरी हुआ है। बीजोपचार करते टाइम अपने एक सावधानी रखनी कि बीजोपचार करते टाइम FIR यानी फकीरा के नाम से कर्म है जो अपने रखनो। तो इनको मतलब है पहल पोता अपने फफूंद नाशक दवाई से बीज उपचारित करनो, बिंगे बाद कीटनाशी दवाई से बीज उपचारित करनो और अंत में अपने कल्चर से बीज है जो उपचारित करनो। तो इन तरीके से अपने जो बीज उपचारित करांगा तो अपने बीज उपचार से लाभ होगा। अब बात करांगे बीज उपचार अपने क्यों करना पड़े। बीज निर्जमीकरण की बात करा, कई रोगाणु और कीड़ा जका या बंगा प्यूपे जका बीज की सतह पर जका पाया जाए तो अने हटाने के वास्ते जकी प्रक्रिया हुआ बिन बीज निर्जमीकरण कह। किसान भाई, बीज कीटाणु शोधन की बात करा तो की रोगाणु और कीट जका बीज के अंदर पाया जाए तो आ कीटा रोगवाणों ने नष्ट करने खातर बीज कीटाणु शोधन है जो कहलावे। बीज संरक्षण की बात करा, बीजा और अंकुरित पौधा ने मृदा में पाए जाने वाला हानिकारक जीवाशु बचाणो बीज संरक्षण है जो कहलावे। तो इन हिसाब है जका बीज उपचार अपने करनो बहुत ही जरूरी हुआ है। अब बात करें बीज उपचार की विधियां, तो इनमें एक तो जैविक विधि है। ई विधि शू राइजो

0: हम कल्चर छुआपा बीजा ने जो उपचारित करा, एक रासायनिक विधि है जैसे मैं ई विधि में जी एक तो रसायन के पाउडर ने रोटरी ड्रम में मिला दिया जैसे उस बीज जनित संक्रमण न रोकण खातर आपा रसायन को प्रयोग है जो करा जिया के थायरा में कैप्टान है या बोर्डो मिक्सचर है आशू। और इनके अलावा तरल रूप में भी बहुत सी दवाइयाँ हुए तो जगह छू के आपा बीजा को उपचार है जो कर सका। इन तरीके से आपा जकी भी फसल बीजा भी मैं बीजो उपचार करना बहुत ही जरूरी है, फसल से अच्छा लाभ है जो ले सका। प्रभु खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। जानकारी का विषय था बीजोपचार के लाभ। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोक भजन।

ये लोकभजन आप सुन रहे थे सोहन प्रकाश राव की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 305।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्रीराम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या 305, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात।

0: आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ज़मीर से ये गीत। संगीत था सपन चक्रवर्ती का, गीत के बोल थे साहिर लुधियानवी के। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हेलो एंड वेलकम, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित सेजू, सीनियर पीडियाट्रिशियन बाड़मेर से, जो बच्चों को मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी आ गया है, ऐसे में बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं?

0: अधिकतर मामलों में साधारण सर्दी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सही देखभाल न करी जाए तो कुछ बच्चों में यह जटिलताएं विकसित हो सकती है। जैसे संक्रमण कान तक फैल सकता है जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है, या साइनस तक पहुंच सकता है जिससे चेहरे में दर्द या नाक से गाढ़ा स्त्राव आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकती है। इसलिए भले ही सर्दी आपको सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जटिलताओं से बचाव होता है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो पाता है। धन्यवाद।
1: ये संदेश जनहित में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
2: दोस्तों, कर्तव्य केवल बाहरी कार्य नहीं होते, वे हमारे जीवन के नैतिक आधार हैं, जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और समाज की भलाई दोनों से जुड़ते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना ईमानदारी, समय निष्ठा और जिम्मेदारी का समन्वय है। इसका अर्थ है जो काम सौंपा गया है वह पूरी लगन और निष्ठा से करना, चाहे परिणाम सरल हों या चुनौतीपूर्ण। ईमानदार व्यवस्था के किए गए छोटे छोटे प्रयास समय के साथ भरोसे और सम्मान का निर्माण करते हैं। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि दूसरों के लिए आदर्श भी बनाता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों को स्वीकार करना, अनावश्यक बहाने न बनाना और गलती होने पर जिम्मेदारी स्वीकार कर सुधार के कदम उठाना सच्ची निष्ठा के लक्षण हैं। जब हम कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हमारा चरित्र दृढ़ बनता है, परिवार और समाज में हमारे संबंध मजबूत होते हैं और अंततः यह दर्शन हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सौतन से। संगीत था उषा खन्ना का, गीत के बोल थे सावन कुमार के। दोस्तों, परिवार को रविवार यानी अवकाश का दिन देना हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए लाभकारी कदम है। सप्ताह के रोजमर्रा के कामों और व्यस्तताओं से मुक्त यह एक दिन परिवार के सदस्यों को आपस में जुड़ने, बातचीत करने और साझा समय बिताने का अवसर देता है। माता पिता और बच्चे मिलकर घर के छोटे छोटे काम कर सकते हैं, पार्क जाने का या मंदिर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, या फिर बैठकर पुरानी यादें और कहानियां बांट सकते हैं, जिससे आपसी समझ और विश्वास गहरा होता है। साथ ही रविवार के दिन डिजिटल उपकरणों से थोड़ी दूरी बनाकर मौखिक संवाद, खेल, पढ़ना और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाने से मानसिक तनाव कम होता है और पारिवारिक परंपराएं जीवित रहती है। नतीजतन, यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और खुशी बढ़ाता है, बल्कि मजबूत पारिवारिक बंधन और सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, अपने परिवार को समय दें।

ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत था आर डी बर्मन का, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और फिल्म का नाम था शोले। दोस्तों, आज की व्यस्त जिंदगी में हम अपने काम, मोबाइल और सोशल मीडिया को तो भरपूर समय देते हैं, लेकिन परिवार के लिए वक्त निकालने में अक्सर पीछे रह जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ देने वाला, हमें संभालने वाला और हमें प्यार व सुरक्षा का एहसास कराने वाला केवल परिवार ही होता है। बच्चों के संस्कार, बड़ों का सम्मान और घर का सुकून सब उसी समय से बनता है जो हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत, हंसी मजाक और सहयोग में बिताते हैं।

काम और सफलता ज़रूरी है, लेकिन अगर इंसान अपने ही परिवार से दूर हो जाए तो वह अंदर से अकेला पड़ जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी सुविधाएं क्यों न हों। इसलिए हमें चाहिए कि दिन भर में कुछ समय केवल परिवार के नाम करें, बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ अपने अपनों के साथ बैठकर बात करें, उनके हालचाल जानें और उनकी भावनाएं सुनें। परिवार छोटा हो या बड़ा, हर सदस्य हमारे सुख दुख में भागीदार होता है, इसलिए हमें भी उनकी खुशियों और ज़रूरतों के लिए समय निकालकर उनका साथ देना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है, यही अच्छे संस्कार हैं और यही जीवन की वह पूंजी है जो हर कठिन दौर में हमें संभालती है।

0: इस गीत के साथ सुप्रभात कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त गुलशन को दें इजाज़त। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: This is also one of the most ambitious.
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: SME, innovation, labor, environment and gender.
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण

0: की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र देवी

0: सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आज़ाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे

0: जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नाबाजोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदामात का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोज़गार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वज़ीर-ए-आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहाँ इख्तिराई टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनअती तरबियती इदारों, ITIs तरबियती इदारों और ज़ेर तरबियत अफराद के ज़रिए तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत ने 19 ज़ैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का माहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका ने आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग आबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो एक मुआहदा कर ले, वरना वहाँ कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के ज़खीरे पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर, जहाँ कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुँचाया है। भारत ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी और तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में नमनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाज़रानी और आबनाए हुरमुस से तजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाज़े से मुतासर खित्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज़ किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लाइजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक़ भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था, बैन अलाक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे।

0: इस भजन के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिवअप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। समाचारों के

0: साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। विधानसभा परिसर में होने वाले उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का समापन सत्र में शिरकत का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्य के लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक कानूनों, संसदीय परंपराओं और डिजिटल विधानसभा के भविष्य पर मंथन होगा। वहीं वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम रहेगा। अमृत उत्सव के तहत साल भर तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन अगले साल राजस्थान स्थापना दिवस पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि समारोह में 6 और उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान भी किया जाएगा।
1: सन 1952 में पहली बार चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा है, तो इस 16वीं विधानसभा तक जो भी विधायक अभी हमारे बीच में है उन सबको इसमें सादर आमंत्रित किया है कि जो 6 बार से अधिक विधायक रहे, ऐसे लगभग 26 लोग हैं जिनका सम्मान भी हम लोग करेंगे और उनके सम्मान के साथ साथ जो आज तक अध्यक्ष रहे जो उनका भी सम्मान समारोह होगा। तो इस तरह कुल मिला के 33 लोगों का उसे सम्मान किया जाएगा।
0: प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जयपुर में बैठक कर वीसी के माध्यम से सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर, एएनएम और सीएचओ के जरिए स्क्रीनिंग का ये काम करवाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने प्रत्येक गर्भवती महिला की 4 गुणवत्तापूर्ण ANC जांच अनिवार्य रूप से कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि बीमित कामगारों और उनके परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने हैदराबाद से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 7 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत कोटा और भवानी मंडी में ESI औषधालय और शाखा कार्यालय शुरू किए गए हैं। कोटा और भवानी मंडी में आयोजित कार्यक्रमों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेस्ट जोन के बीमा आयुक्त रामजीलाल मीणा ने बताया कि इन केंद्रों से औद्योगिक क्षेत्रों के बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा तथा ESI की प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
2: यहाँ इन 2 स्थानों पर लगभग 85,000 परिवारों को ESIC की चिकित्सा और नकदी तलाब की सुविधाएं प्राप्त होगी। ये जो उद्योग नगर कोटा वाला जो डिस्पेंसरी है, ये 5 डॉक्टरों वाला डिस्पेंसरी और यहीं पे शाखा कार्यालय है, तो यहीं चिकित्सा लाभ भी मिलेगा और यहीं नकदी तलाब भी मिलेगा।
0: विश्व युवा कौशल दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। करौली में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ITI तथा कौशल विकास संस्थानों में प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास संस्थानों में विभिन्न गतिविधियां रखी गई हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां युवाओं ने कौशल का प्रदर्शन करते हुए AI, ड्रोन, सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। इनमें पर्यावरण अनुकूल चलित आवास और पुरानी पुस्तकों के डिजिटाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 4 बेसिन हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर

0: नागौर और विंध्यन बेसिन शामिल है। इनमें से तीन में तेल की खोज और दोहन का काम हो रहा है। श्रीमती अरोड़ा ने कच्चे तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन और दोहन कर रही संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल का राज्य की रिफाइनरी में ही परिशोधन हो ताकि प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके। वीबी जीरामजी योजना के तहत श्रम नियोजन में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी विभागों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थायी तथा गुणवत्तापूर्ण कामों को प्राथमिकता देने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पशु रोग नियंत्रण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा भी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में चलाए गए गिवअप अभियान से 99 लाख पात्र जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। वे कल बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 67 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जबकि 27 लाख लोगों ने EKYC नहीं करवाई। इससे पात्र परिवारों को योजना से जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे। इस अवसर पर मंत्री ने लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राजस्थान में मुनाबाव से तनोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन कर रिपोर्ट जारी की है। पिछले महीने 311 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर किए गए ड्राइव टेस्ट में मोबाइल कवरेज, कॉल की गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप और इंटरनेट की गति का परीक्षण किया गया। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे 70 पर अधिकांश स्थानों पर मोबाइल सेवाएं उपलब्ध रही, हालांकि कुछ हिस्सों में नेटवर्क कवरेज की कमी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी सामने आई। परीक्षण में 5G नेटवर्क पर डाउनलोड गति 40 से 55 MB प्रति सेकंड तथा अपलोड गति 7 से 14 MB प्रति सेकंड तक दर्ज की गई। ऐसे परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। रिपोर्ट संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर दी गई है। समाचार कक्ष से जय किशन शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रसव पूर्व जांच के लिए आज से विशेष अभियान। भूमि पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में राजस्थान देश भर में दूसरे और कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। और गिवअप अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 99 लाख जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं मणिराम राठौड़।

0: राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से ही। रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: प्रकार से पीएम
2: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बींजवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कलाकार हैं मणिराम राठौड़।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल अब यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे मणिराम राठौड़ को। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ युगल गीत।

बातों बातों में इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। संगीत था राजेश रोशन का, गीत के बोल थे योगेश के।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। युगल गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप पर। आपको बस करना इतना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सुनें आकाशवाणी सूरतगढ़।

0: ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म दर्द से। संगीत था खयाम का, गीत के बोल थे नक्श लायलपुरी के।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

ये गीत आप सुन रहे थे रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म घरौंदा से। संगीत था जयदेव का, गीत के बोल थे गुलजार के। युगल गीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

फिल्म संगीत में आप सुन रहे थे कुछ युगल गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त गुलशन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए चलते हैं फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर पर, जहां हम आपको सुनवाएंगे प्यार इश्क और मोहब्बत के कुछ चुनिंदा गीत। अगले एक घंटे तक बने रहें हमारे साथ, आनंद लें इन प्यारे प्यारे गीतों का।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से। संगीत था रवि का, गीत के बोल थे राजेंद्र कृष्ण के।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जंगली से। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के।
1: उनके जुल्म

0: हसरत जयपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम था कन्यादान। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल। कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे शैलेंद्र के।

असली नकली। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। संगीत था शंकर जयकिशन का, गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफ़र आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़सी।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीत था SD बर्मन का, गीत के बोल थे शैलेंद्र के और फिल्म का नाम था गाइड। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

धरती कहे पुकार के। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर को। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत के बोल थे मजरू के।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म भीगी पलकें से। संगीत था जुगल किशोर तिलकराज का और गीत के बोल थे एम जी हशमत के।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। फिल्म का नाम था मेरे हमसफ़र।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म ताजमहल से। संगीत था रोशन का, गीत के बोल थे साहिर के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। आवाज दी है लता मंगेशकर ने, नीरज ने इस गीत को लिखा और एसडी बर्मन का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं इज्जत, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। शाहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है वक्त। आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। शाहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत रवि का है।

आइए सुनते हैं अभिमान। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है किशोर कुमार ने, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और एस डी बर्मन का संगीत है।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। आइए अब सुनते हैं धर्मात्मा, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मुकेश और कंचन की। इंदिवर ने इस गीत को लिखा और संगीत यह है कल्याण जी, आनंद जी ने।

आइए कार्यक्रम सैनिकों के लिए, इसमें आखिर में ये गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है बॉर्डर। आवाजें हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा और अनु मलिक का संगीत है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। 12:50 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे प्राकृतिक खेती, हर किसान की जरूरत। 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे विश्व युवा कौशल दिवस, पद्मश्री से सम्मानित स्वामी ब्रह्मदेव, पौधों को कीट से बचाने के उपयोगी टिप्स। 2:00 दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 2:30 पर श्रोता फिल्म संगीत सुन सकते हैं। 5:00 युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें श्रोता आज फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। चौपाल का प्रसारण 7:00 किया जाएगा। इसमें श्रोता पत्रोत्तर कार्यक्रम सुन सकते हैं। इसमें श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, अपनी बात भेज सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं।

इसके अलावा बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। 7:45 पर फिल्म संगीत श्रोता सुन सकते हैं। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। हेलो मन भावन का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। इसका निर्देशन और संयोजन रहेगा नवीन सिसोदिया का और प्रस्तोता रहेंगी समिति बोहरा।

अभी श्रोता कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम।

कोरा कागज था मन मेरा। श्रोताओं, आज बात करते हैं प्रेम की, सच में जो हमारा मन हृदय कोरे कागज की तरह होता है। कहते हैं प्रेम की शुरुआत बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होती है। उस पर न कोई कहानी लिखी होती है, न कोई याद, न कोई एहसास। फिर जीवन में कोई ऐसा आता है जिसकी मुस्कान, जिसकी बातें और जिसकी मौजूदगी हर कोरे कागज पर प्यार के अनगिनत रंग भर देती है। और कहते हैं ना कि जो प्रेम है वो भीगे कागज की तरह होता है, जिस पर न तो आगे की कहानी लिखी जा सकती है और न पिछली कहानी को पढ़ा जा सकता है।

श्रोतो, बात कर रहे थे प्रेम की। कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को बहुत कुछ देती है, लेकिन कुछ सौगातें ऐसी होती है जो हर किसी की किस्मत में नहीं होती। सच्ची मोहब्बत भी उन्हीं अनमोल नेमतों में से एक है। ये हर रोज हर मोड़ पर नहीं मिलती, जब मिलती है तो जीवन में खुशियों की बहार ले आती है, और जब बिछड़ जाती है तो उसकी यादें उम्र भर साथ चलती है।

0: कभी कभी।
1: सच में मोहब्बत एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और मोहब्बत क्या है इसे कोई नहीं जान पाया। ये एक दिल का भाव है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

श्रोताओं, मोहब्बत जब दिल में उतर जाती है तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कभी हालात, कभी किस्मत और कभी मजबूरियां दो दिलों को जुदा कर देती है। तब यादें साथी बन जाती है और दिल बार बार उसी शख्स को तलाशता है जो अब साथ नहीं है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुने मेहदी हसन की गाई चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे मेहदी हसन की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है प्राकृतिक खेती हर किसान की जरूरत।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में देखा नहीं तो अब दिन ब दिन आप देख ला रहे हैं का अपनी जी की भूमि है, अपनी जी की जमीन है बा एक तरह से जहरीली होने ला रही है। और इंगो जो को मोटो सो कारण है वो आप मानस कहाँ का आप जो को जहर नाखन ला रहा हाँ, जो को छिड़काव कर ला रहा हाँ, और जितना भी भांत भांत का आप कीटनाशक नाखा नहीं तो बिंग विजेश है का अपनों पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही हुए। इंग सागे सागे अपनी जी की भूमि है, बिंगो जो को स्वभाव है, बिंग जी की भौतिक दशा है, बिंगो जो को उपजाऊपन है वो भी धीरे धीरे खत्म होने ला रहे है। और इंगा जका कारण है वे बहुत विनाशक मांस का आप आने वाले टाइम का मां बड़ा भयानक होएगा। और माटी जी की है बा इतनी रंगत ज़्यादा बदल जाएगी आपकी तो स्वभाव जो है वो तो बदल जाएगो कि जगह की वजह से आप अपनी जगह फसल है बा कोनी ले इसका नहीं। और आने वाले टाइम का मां की है कि जनसंख्या जी की अब दिन ब दिन देखने ला रहे हैं का बढ़ोतरी खाने ला रही है, और उपजाऊ जो को है भूमि है बा धीरे धीरे खत्म होने ला रही है। तो अन्न आप कट्ठे से उपजा से है ना, तो उपजाऊ भूमि रखने के लिए आपने कई सा जगह पुराना तौर तरीका है भी आपने अपनाना जरूरी है। और वो रासायनिक जो को तरीको है वो धीरे धीरे अब खत्म कर देवा बंद कर देवा तो ईशु बढ़िया बात को नहीं उसका सा खेती ने भी बचानी है, आने वाला जो को जीवन है बिना भी बचाना है, पर्यावरण भी बचाना है। क्योंकि अब जो को खाद्यान्न आप खाण ला रहा हाँ, जो को अन्न आप खाण ला रहा हाँ वो सफाई जहरीलो है। चाहे आप पशुआन आप निराचारी करा जो को घास है या फिर नीरो जो को है वो आप ना खाँ, या फिर आप खुद अन्न खाण ला रहा हाँ, या फिर आप जो कि हवा में सांस ले ला रहा हाँ, सारी की सारी प्रदूषित है। और इंगा दोषी जो कहाँ आप कट्ठे कट्ठे किसान भाई लोग भी हाँ, तो अपन धीरे धीरे किए है का वो रासायनिक जो को तरीको है वो छोड़ गए। और आप पुराना जगह अपना बड़ा बुजुर्ग जगह खेती कराया करता कोई टाइम का माँ जी खेती होती बा एकदम रसायन रहित खेती होया करती, जगह माँ कोई छिड़काव को नहीं होता नहीं, कोई रसायन जो है वो कौन छिड़कता नहीं, और अन्न जो है वो बड़ो ताकतवर मानिस तो और गुणकारी भी हो, और कहीं भी तरीके की बीमारियां वे भी कोनी होती नहीं। पर अब की है कि जिया जिया अब जनसंख्या बदलने आ रही है और अपने जो भाई लोग है बांगो जो को लालच है ज़्यादा मुनाफे गो ज़्यादा पीसो कमाना गो वो कट्ठे न कट्ठे आपने या केस कहाँ का धीरे धीरे अपनी जो की जीवन है बिना एक तरीके से देखा नहीं तो पीछे ले जान ला रही है, धीरे धीरे जीवन ने खत्म करना जो को काम है वो आप कर ला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे एकदम नहीं अपन धीरे धीरे जो की है वह खेती को जो को स्वरूप है बिंगो जो को बदलाव है वो अपन करना जरूरी है। और पुराने टाइम में जका जंगली बीज जगह आप बीजा करता चाहिए, आप धान की फसल की बात करा तो कण की फसल की बात करा तो या फिर सब्जियों की बात करा तो बीज का बीज हाँ भी देसी बीज गमा आया करता और बंगी बीजांत करता तो बंगो एक स्वाद जो है वो भी अलग होया करता, बंगी जी की ताकत है वह भी एक अलग होया करती और बीज की चीज़ें ही शरीर ने गुण कराया करती। लेकिन अब जो को अन्न खान ला रहा हाँ और बीज अन्न चूंकि है आपने कई इसी जी बीमारियां हैं कोई टाइम गमा आप बंगो कभी नाम भी कौन सुनिया करता नहीं, लेकिन अब भी आपने सामने आ रही है आप देख ला रहे हाँ। बात करा जी अब जैविक खेती के साग साग आप कि प्राकृतिक खेती जी है वह अपनानी जरूरी है, क्योंकि अपनी जी सरकार है अपना जगह कृषि विज्ञान केंद्र है कृषि विशेषज्ञ है वे भी इन बात पर जोर देने ला रहे हैं कि अब धीरे धीरे आप प्राकृतिक खेती का नहीं पाउंडो भरा ताकि आप अपना जीवन बचा सकें अपनी भूमि बचा सकें। देखा नहीं कि

जिगे अपने कालियो सोरो धोलियो सोरो या फिर कई जगह किसान भाई लोग है बे ये भी शिकायत कर रहे कै मारी जगी भूमि है बा कल्डी हो रही है कठोर हो रही है, तो ये जगह रासायनिक छिड़काव है बाँ शुक्या का माटी जकी है बा कठोर होने ला रही है उसर होने ला रही है, और अब धीरे धीरे क्या कि खेती होने वाला जो काम है वो बंद हो जाएगा क्योंकि पानी जो है वो भी धीरे धीरे कम होने ला रहा है, पानी जो है वो खारो होने ला रहे है, तो पानी बचाने के सागे सागे अपन भूमि बचानी जरूरी है, खाद्यान्न जो है वो भी सुरक्षित रखना जरूरी है। प्राकृतिक खेती जकी है बा बिना कीटनाशकों से आप कर सकें क्योंकि आपा प्रकृति के सागे तालमेल बिठा गए और बढ़िया खेती कर सकें जिस कि माटी की उर्वरा शक्ति है वह बढ़िया बनी रहे और पर्यावरण ने भी कोई नुकसान को नहीं होनी। और अपना जगह विशेषज्ञ है वह बात बताओ है कि इन्हें जीरो बजट की जी खेती है वह भी कर सकें क्योंकि मैं कोई ज़्यादा पीछे टको कौन लागे नहीं, आपने घरे क्या खेती के साथ आप पशुधन पालन करा और बिंगो जो को मल है बिंगो जो को कचरो है या मांस का मलमूत्र जो है वो खाद के रूप में परिवर्तित करके बदल करके हर बिना आप खेत में ले जागे ना कहाँ तो बीस क्योंकि माटी की जी भौतिक दशा है वह बदल जाएगी और माटी की जी उर्वरा शक्ति है भी में भी बढ़ोतरी खा जी। भाई लोगों प्राकृतिक खेती की जी विधि है वह उत्पादन ने एक तरह से रोक गए और स्थिर रखने को काम करे और उत्पादन लागत जी है वह कम हुए जको रसायन आपां बाजार से ले गया वहाँ आपां देखा नहीं कि महंगाई जी की है वह धीरे धीरे हर तबका वहाँ बदल ला रही है, तो रसायन जो है वो भी महंगो होने ला रहे है और उत्पादन जो है वो धीरे धीरे घटन ला रहे है, तो जको पी सो टक्को आपां रसायन के ऊपर लगान ला रहे हाँ और खेत में ले जाके जको रसायन आपां नखन ला रहे हाँ, तो उत्पादन जो है वो धीरे कम होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा और जको आपनों खर्चो है वो बढ़ जाएगा, तो आपां क्या कह फायदा होने की जगह नुकसान होना ज़्यादा हो जाएगा। और इन अलावा जी बात करें आपने घरांग मां देसी गायें है देसी पशु जगह है बांगो जो को गोबर है मलमूत्र है बीचू भी आप जो खाद्यान्न जो को है वो बढ़िया पैदा कर सकें फसलों मां नागे अपना अपनी जो भूमि है बिना पशु धार सकें। और इंगे सागे सागे थाने शुरुआत का मैं भी बताया हो कि आप जका जैविक तरीका है वे भी अपनावा जी हाँ देखा नहीं, तो हरी खाद जी है वह भी आप अपने खेत का बीजांत कर सकें भी लारले टाइम का मां भी दो चार महीना पहला भी थाने जानकारी दी कि आप ढेंचो है या फिर सनेई है अन बीज के गुआर है या फिर दलहनी जी की फसलें हैं बने बीजांत कर गए और आपने जगह भाई लोग अभी हरी खाद बना सके। हरी खाद को एक बड़ो बढ़िया फायदा वो है कि बिंग माँ के जीवांश की जी मात्रा है वह बहुत हुए जब वह गोडा गोडा हो जाए हरी खाद और बिना पा अगर जुताई कर देवा बढ़िया तरीके से तोई सूँ हल सू कल्टिवेटर सूँ और बिन मिट्टी में मिला देवा तो बीच क्या कब माटी का माँ गड़गे सड़गे और बढ़िया तरीके से माटी की जी उर्वरा शक्ति है बिन बढ़ा देसी माटी का माँ जगह सूक्ष्म पोषक तत्व है वह मैं भी बढ़ोतरी कर देसी और गायों को जो को गोबर है मलमूत्र जो को है बीचू भी आप है कह कोई खाद है या फिर कोई और जगह तरीका है बाँसू अपना गए आप अपनी जी माटी है अपनी जी भूमि है अपना जो खाद्यान्न है वो पैदा कर सकें और बचा सकें। और के वह कि आपने जो कि गाय के गोबर को जो को मलमूत्र है चाहे खाद है भी खाद का माँ का 300 प्रकार का ऐसा सूक्ष्म तत्व जका है सूक्ष्म जीवाणु जका है भी हुए और भी अपनी भूमि के लिए भी बड़ा फायदेमंद हुए और अपन ऊपर से कीम भीतरियों जो को रसायन है वो छिड़कने की कौन जरूरत पड़े नहीं। इनको मोटो सो कारण वही है कि एक तो आपा के आपने जगह भाई लोग है बे धीरे धीरे कई जगह अपना ला रहे है और क्यों है एक बार जो उत्पादन है वो कम होगा क्योंकि जिया जिया अपनी जी भूमि है बिंगू आप नाश करे है बिया बिया धीरे धीरे आप बिंगू सुधार करना है एकदम भी नाश को नहीं हुई नहीं तो एकदम सुधार भी कौन कर सका नहीं एक बार टेम लगेगा एक बार आप 2 बीघा में 4 बीघा में शुरुआत कर देवा और बिहू बाद आप धीरे धीरे गया कि अपनी पूरी जी खेती है बिना जैविक तरीके पर ले गया बिना प्राकृतिक तरीके पर ले गया वहाँ। और इनके अलावा आपने जो पीछे टको है वो भी कौन लगे नहीं वास्ते जीरो बजट की खेती के वह और माटी की जी उर्वरा शक्ति अभी में तो बढ़ोतरी हो ही है जल धारण करने की जी क्षमता है भी में भी काफ़ी मात्रा का बढ़ोतरी हो जाए और आपने जो खाद्यान्न है बड़ो स्वस्थ होएगा बढ़ियो माना कह गुणवत्ता होएगा जो को खास है तो अंग चंगने भी बढ़िया लगेगा और कई जी की बीमारियां हैं भी आप खाद्यान्न से होए तो वे भी आपने को नहीं हुए नहीं। और इनके अलावा आपने किया कि जलवायु जो को परिवर्तन होने ला रहे बिंगमा भी कठिन कट्ठा आप दोषी हाँ तो बिंगमा भी आप बचाव कर सकें अपना जो पर्यावरण है वो भी आप बचा सकें अपना जगह मित्र कीट है वे भी आप बचा का कोई टाइम का माँ अपना जगह मित्र कीट होया करता बे भूमि का माँ भी होया करता आस पास भी होया करता तो बिके अगर रसायन छिड़कने की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गया एक गोलिया है कागला है या फिर जी चिड़ियावा है या फिर आपने जमीन का माँ जका केंचुआ है या फिर जका दूसरा जीव है बे नष्ट हो गया तो अपा जो को काम कर ला रहा वो एक तरह से पाप भी कर ला रहा और आपना जो को खाद्यान्न है वो भी आप दूषित खान ला रहा तो धीरे धीरे क्या है कि आप जैविक तरीका अपनावा जहाँ जीवामृत जो को है वो भी आप बना सकें। वो शुरुआत का टाइम की बात करा तो आप जो को बीज उपचार है वो करिए बढ़िया तरीके से बीज जनी जगह रोग है बाँसू आप अपनी फसल ने बचा सकें जहाँ गाय के गोबर ने और जो को पेशा

0: है गाय को, या फिर गुड़ है, बेसन है, माटी है, और पानी से तैयार करके वो घोल चुके है, वो अपना बीज उपचारित के काम में लेस काम। इनके अलावा बीजामृत जो को है वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी गाय का गोबर से या फिर पेशाब से और काली वो जबकि कड़ी जकी हुए आप चूना जकर के देवा बा और पानी से भी तैयार करके वो घोल जो है वो अपना आगे और आपा अपना जो को बीज है वो उपचारित कर सका। तो इन तरह से क्या का आपा अपनी जकी भूमि है बिन बचानी जरूरी है सा, प्राकृतिक खेती अपनानी जरूरी है सा। पर अब खेत क्यारी का काम धंधा अपन है और भी करना है, हूँ चलूँ, राम राम सा, राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय था प्राकृतिक खेती, हर किसान की जरूरत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र की पाठशाला बताते हुए कहा कि सरकार को जनप्रतिनिधियों की आलोचना भी गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ही जनता की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है।
3: अगर कोई मंच होता है तो लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं होती है जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो। और मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेही जनपति भी होना चाहिए। अब समय गया, समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता जवाबदेही उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, आज जनता उत्तरदायी जवाबदेही शासन मानती है।
2: सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की यात्रा लोकतंत्र की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा सदन में अकाल, बिजली और जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर सार्थक चर्चा के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
4: जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया, लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे विचार में है, और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे इस राजस्थान को गति देने का काम किया।
2: कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई पूर्व और वर्तमान विधायक शिरकत कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से आज दोपहर कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हाल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामलों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री खींवसर इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और सुदृढ़ बनाने

0: तथा उपचार व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के आसींद में आज तड़के एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों की सरेरी गांव के पास राजमार्ग पर एक कार गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। मृतकों में एक युवक भीलवाड़ा जिले का जबकि दो युवक बिहार के रहने वाले थे और भीलवाड़ा में केटरिंग का काम करते थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर स्थित उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, निर्माण कार्यों और कवच प्रणाली से जुड़े काम समय पर पूरा करने को कहा। साथ ही मानसून के दौरान रेलवे ट्रैक, विद्युत और सिग्नल प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन श्री चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने कार्यक्रम महिला जगत।

हौसलों की उड़ान हो, सपनों को नया विस्तार मिले, हर युवा के हाथों को कौशल का अनमोल उपहार मिले, सीखने की चाह से हर मंजिल आसान हो जाए, विश्व युवा कौशल दिवस पर हर युवा जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए। नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत और मैं हूँ आपकी सखी अलका वर्मा। और आज जो है 15 जुलाई है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस, और इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। सखियों, हर युवा के मन में कुछ कर दिखाने का सपना होता है, लेकिन केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे साकार करने के लिए सही स्किल की आवश्यकता जो है वो हमें होती है, और यही संदेश हमें विश्व युवा कौशल दिवस देता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए कौशल विकास का महत्व बताया जा सके। आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, संचार कौशल, भाषा, उद्यमिता, हस्तशिल्प, कृषि और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, और यदि हमारे युवाओं का सही प्रशिक्षण और अवसर मिले तो वे देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार भी जो है वो विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें भी अपने घर और समाज के युवाओं को नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखना कभी भी नहीं रुकता, ये हम सब जानते हैं, इसलिए हर नया कौशल आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो खोलता है। आइए इस विश्व युवा कौशल दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम निरंतर सीखेंगे, अपने कौशल को निखारेंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से आप सभी को विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत स्वादागर फिल्म से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है आनंद पक्षी ने।

किसी ने क्या खूब कहा है सखियों, कि जो जीवन को सेवा का पथ दिखाए वही सच्चा संत कहलाए। जो जीवन को सेवा का पथ दिखाए वही सच्चा संत कहलाए। ज्ञान त्याग और सद्भाव से जो जग को राह दिखाए, ऐसे महान विभूति को शत शत नमन हमारा। सखियों, आज हम बात करेंगे 2026 के पद्मश्री से सम्मान से सम्मानित स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के बारे में। स्वामी ब्रह्मदेव जी राजस्थान के गंगानगर से हैं। वे एक संत, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समाज सेवा के रूप में देश भर में सम्मानित हैं। भारत सरकार ने उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया है। ब्रह्मदेव जी का जन्म 4 मई 1944 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने कम उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन अपनाया और सतगुरु स्वामी करनैल दास जी के सानिध्य में साधना की। अमृतसर में अध्ययन के दौरान एक नेत्रहीन विद्यालय के संपर्क में आने पर उन्होंने अपना जीवन दिव्यांग, विशेषकर नेत्रहीन और श्रवण बाधित बच्चों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प कर लिया। पिछले लगभग 45 वर्षों से वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयासों से हजारों बच्चे और परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। पद्मश्री से सम्मानित स्वामी ब्रह्मदेव जी एक ऐसे संत और समाज सेवी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा, शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित किया है। उनका मानना रहा है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार, नैतिक मूल्यों की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के अनेक कार्य किए हैं। उनके प्रयासों से अनेक लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता का लाभ भी मिला है। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्ति, अनुशासन, आत्मनिर्भर और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया है। ब्रह्मदेव जी का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक रहा है। वे हमेशा प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा को जीवन का अपना आधार मानते हैं। उनके प्रवचनों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की व्यवहारिक सीख भी जो है वो हमें मिलती है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और जनसेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। स्वामी ब्रह्मदेव जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सेवा का

भाव, सच्चाई और समर्पण हो तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसी जानकारी के साथ आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रामलखन से। आवाजें हैं मनहर उदास और अनुराधा पौड़वाल की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं बचपन की उन मीठी यादों में, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, नानी का घर। बचपन में जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी, सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता था कि कब जाएंगे नानी के घर। वे घर सिर्फ एक मकान नहीं होता था सखियों, बल्कि प्यार, अपनापन और खुशियों का खजाना होता था। नानी के घर पहुंचते ही दरवाजे पर मुस्कुराती हुई नानी, प्यार से गले लगना, माथे पर हाथ फेरना और कहना, आ गई मेरी लाडो। बस सारी थकान जो है वो पल भर में दूर हो जाती थी। नानी के हाथों का बना खाना आज भी हर किसी की यादों में बसा होता है। गरम गरम परांठे, घर का बना हुआ मक्खन, खीर, मालपुए, पूरियां और अचार, इनका स्वाद आज भी मन के में बचपन में पहुंचा देता है। पहुंच गए ना आप भी बचपन में? जी हाँ सखियों, सभी ने अपने अपने नानी के घर में अपने नानी के हाथ के बने हुए खाने का स्वाद लिया होगा। किसी का नानी का घर शहर में होता है, किसी का गांव में होता है, और गांव में तो क्या बातें हैं। जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो बड़ा सुकून सा मिलता था। चूल्हे की रोटी होती थी, गुड्डी गुड्डियों का खेल खेलते थे, मिट्टी से नानी बर्तन बना के देती थी, घर बना के देती थी, बहुत यादें जुड़ी होती थी। अगर मैं ये कहूँ कि आज भी मैं उन दिनों को याद करती हूँ, मिस करती हूँ, तो गलत नहीं होगा। नानी के घर में शाम होते ही इंतज़ार रहता था बच्चों के, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के आने का, उनके साथ खेल कूद के सिलसिले का। सुबह से शाम तक दोस्तों, भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कबड्डी, लुक्का छिपी, पेड़ों पे चढ़ना, बेर तोड़ना, आम तोड़ना, जामुन तोड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बचपन की यादें हैं जिन्हें हम बहुत मिस भी करते हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फिर भी हर दिन खुशियों से भरा होता था। पता ही नहीं चलता था कब 15 से 20 दिन नानी के घर में बीत गए और वापस घर आने का समय हो गया होता। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था शाम को। क्यों रहता था वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं किशन कन्हैया फिल्म से ये गीत। आवाज़ मनर उदास और साधना सरगम की, संगीत राजेश रोशन का, और गीत लिखा है इन दीवर ने। आप सुनिए ये गीत और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे आपको बताएंगे नानी के घर की और बहुत सारी यादें।

हाँ तो सखियो, हम बात कर रहे हैं नानी के घर की कुछ यादों की। तो हम बात कर रहे थे कि शाम होने का हमें सबसे

ज़्यादा जो है अपने समय में इंतज़ार रहता था। और वो क्यों रहता था? क्योंकि नानी जो है शाम के समय, रात के समय कहानियाँ जो है वो सुनाती थी। राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, वीर योद्धाओं की कहानी और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। उन कहानियों में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की सीख भी छुपी होती थी। सच बोलना, मेहनत करना, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों की मदद करना। आज समय जो है वो बदल गया है। बच्चों की दुनिया मोबाइल और टीवी तक सीमित होती जा रही है। संयुक्त परिवार जो हैं वो कम हो रहे हैं और नानी के घर के पर जाने का अवसर भी जो है वो पहले जैसा नहीं रहा है। लेकिन यदि हम बच्चों को परिवार से जोड़ते तो वे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन जो है वो समझ पाएंगे। नानी का घर सखियों हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं है बल्कि अपने लोगों के साथ प्यार और साथ है, रिश्तों को समय देना, बड़ों का सम्मान करना और परिवार के साथ मिलकर खुशियाँ बांटना ही जीवन की असली खुशी है। अगर आपकी नानी आज भी आपके साथ है तो उनसे मिलने का थोड़ा सा समय निकालिए, उनकी बातें सुनिए, उनके अनुभवों से सीखिए और अपने बच्चों को भी उनके स्नेह से जोड़िए, क्योंकि बचपन की सबसे सुंदर यादें अक्सर जो है नानी के घर से ही जुड़ी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम सब की बचपन की यादें नानी के घर से जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मोम की कुड़िया, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हेलो एंड वेलकम, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित सेजू, सीनियर पीडियाट्रिशियन बाड़मेर से, जो बच्चों को मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी आ गया है, ऐसे में बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं?
2: अधिकतर मामलों में साधारण सर्दी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सही देखभाल न करी जाए तो कुछ बच्चों में यह जटिलताएं विकसित हो सकती है। जैसे संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है, या साइनस तक पहुंच सकता है, जिससे चेहरे में दर्द या नाक से गाढ़ा स्त्राव आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकती है। इसलिए भले ही सर्दी आपको सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जटिलताओं से बचाव होता है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो पाता है। धन्यवाद।
1: ये संदेश जनहित में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
3: घर की बालकनी हो, छत का बगीचा हो या खेत, पौधों पर कीट का हमला उनकी वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर हम पौधों को स्वस्थ और हरा भरा भी रख सकते हैं। जैसे कि नियमित निरीक्षण करें, हर 2-3 दिन में पौधों की पत्तियों के ऊपर और नीचे ध्यान से देखें कि कहीं छोटे कीड़े, अंडे या जाले तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। नीम का तेल उपयोग करें। नीम का तेल प्राकृतिक कीटनाशक जो है वो माना जाता है। इसे पानी में मिलाकर सप्ताह में एक बार छिड़काव करने से कई प्रकार के कीटों से बचाव होता है। पौधों को सही मात्रा में पानी दें। बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और कीटों का हमला जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार ही पौधों को पानी दें। सूखी और संक्रमित पत्तियां जो हैं हटाएं। पीली, सूखी या कीटग्रस्त पत्तियां जो हैं उन्हें तुरंत काटकर अलग कर दें, ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। पौधों के बीच उचित दूरी रखें। बहुत अधिक घने पौधों में हवा का संचार जो है वो कम होता है, जिससे रोग और कीट जो है वो तेज़ी से फैलते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करें। गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट और रसोई से बनी जैविक खाद पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाती हैं। लाभदायक कीटों का संरक्षण करें। लेडीबर्ड जैसे मित्र कीट हानिकारक कीटों को खाते हैं, इसीलिए अनावश्यक रासायनिक दवाओं का प्रयोग जो है ना करें।

आवश्यकता होने पर ही कीटनाशक दवाई का उपयोग करें। यदि कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो तभी कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें और उचित कीटनाशक का प्रयोग करें और उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। क्योंकि थोड़ी सी देखभाल और सही जानकारी से पौधों को स्वस्थ, हरा भरा और कीटों से सुरक्षित जो है वो हम रख सकते हैं। स्वस्थ पौधे जो हैं वो न केवल हमारे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य का भी आधार बन सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म घायल से आवाज़ पंकज उदास और लता मंगेशकर की, संगीत पप्पी लहरी का है और इस गीत को लिखा है अनजान ने।

सके अब बात करते हैं कुछ ऐसे होम डेकोर्स की जो घर को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने घर को हरियाली से भरना होगा। पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि घर में शांति और ताजगी का एहसास कराते हैं। तुलसी, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट जैसे इंडोर प्लांट्स सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और तनाव को घटाते हैं। रोशनी और खुशबू का सही इस्तेमाल करें, सूरज की प्राकृतिक रोशनी को घर में आने दें। साथ ही सुगंधित मोमबत्तियाँ या एसेंशियल ऑयल्स डिफ्यूज़र का प्रयोग करें। लेवेंडर, सैंडवुड और रोज़ की खुशबू से मन को शांत रखें, मन जो है वो शांत होता है। दीवारें और पर्दों में हल्के और शांत रंग जैसे कि सफ़ेद, आसमानी, हल्का पीला या हरा रंग चुनें। ये रंग मन को सुकून देते हैं और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म आवारगी से। मोहम्मद अजीज़ और लता मंगेशकर ने इस गीत में अपनी आवाज़ें दी हैं। संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

क्यों, उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी सखी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत और कल का इंतज़ार कीजिए। अलका वर्मा कल फिर हाजिर होगी। नमस्कार।

0: in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products, including dairy, vegetables, edible oils, are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन। समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान। आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर

0: 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा

0: रखा है वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है, उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
2: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
3: The Security Council has been ineffective.
4: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
3: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 किलोहर्ट्ज़ पर।

डीआरएम चैनल 900 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत, आइए सुनते हैं खामोशी। इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। अख्तर रोमानी ने इस गीत को लिखा और खयाम का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब जब फूल खिले, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए अब सुनते हैं आदमी, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और नौशाद का संगीत है।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुनते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है मुकेश ने, हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है झुमरू, आवाज दी है किशोर कुमार ने, मजरू ने इस गीत को लिखा और संगीत किशोर कुमार का ही है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1

मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नजर होंगी।
1: ये आकाशवाणी

अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनअतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनअती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम ना उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरी तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है, भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने ये बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज़्यादा रिसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमदोरफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत जामे इकतसादी और तिजारती समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तिजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फ़रोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजाना अखबार में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इकतसादी और तिजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत की अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा इससे न सिर्फ भारत के बरामदकारों को फायदा होगा बल्कि व्हाइट कॉलर सर्विस से वाबस्ता लोगों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते के तहत बरतानिया के लिए लगभग भारत की सभी बरामदी मसनूआत को महसूलात से छूट हासिल होगी, जिससे छोटे ताजिरों, किसानों, माहीगीरों और दूसरे शोबों के लिए जबरदस्त मौके पैदा होंगे। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहदे FTA को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। SOCHM के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मजकूरा मुआहदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। उन्होंने ये कहा कि इस मुआहदे से टेक्सटाइल, चमड़े, बहरी अशिया, जवाहरात और जेवरात, इंजीनियरिंग मसनूआत और केमिकल्स के शोबों को नुमाया फायदा पहुंचेगा। भारत की तिजारत के फरोग से मुतालिक काउंसिल के चेयरपर्सन मोहित सिंगला ने कहा कि मस्कुरा मुआहिदा भारतीय बरामदकारों के लिए मवाक़े का एक नया बाब खोलता है और इससे बाजार में उनकी रसाई में इजाफा होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज नाफिज होने वाला भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहिदा भारत की मुआशी तरक्की और आलमी शराकत दारियों को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है। जनाब सिंह ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत ऐसे मुआहिदे कर रहा है जो मुल्क की मीशत को मुस्तहकम करते हैं, आलमी मौाक़े को फरोग देते हैं और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हैं। सारिफिन की उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इकतसादी और मुआहिदा एक अहम कदम है जो किसानों और ज़रई शोबे का तहफ्फुज़ करते हुए मुल्क के इक्तिसादी मवाद को मुस्तहकम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मस्कूरा मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी रवाबित

को मुस्तहकम करने की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान बाला के नए मुंतखबा मेंबरों को हलफ दिलाया। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक नई खसूसी अदालत नामजद की है। इस अदालत में कौमी जांच एजेंसी के कानून के तहत और इस एजेंसी की तरफ से तफ्तीश करदा मामलात की समाअत की जाएगी। वजारत दाखिला ने बम्बई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र सरकार से सलाह मशवरे के बाद इस अदालत का ऐलान किया है। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। फलस्तीन ने लड़ाई से मुतासरा मुल्क में 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत के फैसले का खैर मकदम किया है। इनमें से एक प्रोजेक्ट पेशावराना तरबियती इदारे में जिस्मानी आज़ा फिट करने का एक खसूसी अस्पताल कायम करने से ताल्लुक रखता है। नई दिल्ली में फलस्तीन के सिफारत खाने ने एक बयान जारी करके भारत के फैसले का खैर मकदम किया है। इस बयान में ये भी कहा गया है कि भारत ने यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया है जब फलस्तीनी अवाम खासतौर पर गजा पट्टी के लोगों को हालिया दिनों में से ज्यादा संगीन इंसानी बहरान का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अगले हफ्ते फौजी हमले तेज कर दिए जाएंगे। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में अमरीकी हमले जारी रहेंगे जिसके तहत ईरान के बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ियात पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ियात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में काम रही है जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। और फीफा आलमी कप में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्त दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम में भी 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में वैदपाल की मौसीकी से, नगमा फिल्म है सौतन की बेटी।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। फिल्म थी प्यारा दुश्मन। और सामने लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में राम लक्ष्मण की मौसीकी से जाय नगमा। फिल्म है पुलिस पब्लिक।

सजती है हाय हाय, लगे मेला तेरी गली में, धूम मचती है।

सामाजिक समझ के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत गीतों भरी कहानी तकदीर।

0: हेलो प्रिंस, कैसे हो? खैरियत से तो हो ना?
1: नहीं यार, अंधेरे में कैसे बैठे हो?
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही बैठा था कि अचानक नींद आ गई।
1: हमारी नींद आ गई थी या कोई सुहाना सपना देख रहे थे?
0: दरहकीकत मैं सपनों ही में गुम था, क्योंकि अभी अभी एक नगमा सुन रहा था यार। खैर यार, छोड़ो, तुम सुनाओ दोस्त, तुम्हारा क्या हाल है? और हाँ, तुम्हारे अरमानों के आसमान पर मोहब्बत की पतंग कहाँ तक पहुंची?
1: हाँ दोस्त, अपना नसीब ऐसा कहाँ,

0: जल्दी पतंग हवाओं से बातें करे। अभी तो जद्दोजहद के समंदर में मुकद्दर आजमाई करनी बाकी है। शायद इस गहरे समंदर की मौजों में कोई कीमती मोती हाथ आ जाए।
1: भाई ऐसा क्यों, और तुम्हारी नीलोफर का क्या हुआ? भाई मैंने तो सुना है आजकल तुम्हारा नीलोफर से खूब
0: वो तो ठीक है, मगर दोस्त तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो बड़े बाग की बेटी है। हाँ वैसे नीलोफर का दिल बहुत साफ है, और उसके शीशे दिल में मेरी मोहब्बत की तस्वीर भी साफ साफ नजर आती है। लेकिन ये सोचकर कि जमाना क्या कहेगा, इसीलिए मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पहले कदम ही फिसल जाए और मैं गुमनामी और बदनामी के ऐसे गार में जा गिरूं कि जहां सिवाय अंधेरे के और कुछ हाथ ना लगे, और फिर ये दुनिया मेरा मजाक बनाती रहे।

0: भाई।
1: जावेद के जाने के बाद मैं फिर ख्यालों में गुम हो गया और माजी के तमाम वाकयात मेरे आसाब को झंझोड़ने लगे। मेरा कॉलेज का जमाना भी क्या जमाना था, बस पढ़ाई थी, वालदेन का प्यार था, दोस्ती थी, वफा थी। और इसी बेफिक्री और मुस्तकिल पढ़ाई के सबब मैं कॉलेज में हमेशा टॉप पर रहा था और दौरान तालीम कभी किसी लड़की की तरफ, हाँ वो कितनी ही खूबसूरत क्यों न रही हो, कभी तवज्जो नहीं दी। मुझ पर पढ़ाई के बाद कुछ बनने की धुन सवार थी। एक शाम मेरे घर एक खूबसूरत मोहनी सी सीधी साधी अल्हड़ सी लड़की आई और घर में आकर बहुत प्यारे अंदाज में मुझसे मुखातिब हुई।
0: मुबारक हो जनाब, बहुत बहुत मुबारक।
1: लड़की क्या थी, कयामत थी, चौदहवीं का चांद। और सितम बालाए सितम ये कि उसकी सादगी उसके हुस्न को चार चांद लगाए हुए थी। फिर उसने न किसी किस्म का मेकअप कर रखा था, न बनावट वाली कोई बात, सादगी और सिर्फ सादगी। और फिर दिल उसी दिन से उसका होकर रह गया। लड़की तो चली गई मगर दिल धड़कता रहा, बार बार मुझसे पूछता रहा, तुमने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा, ये भी ना पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, मुझसे क्या काम है। बस दिल उठाकर बैठ गए और अपनी हालत दीवानों की सी कर ली। 2-3 रोज ऐसे ही ख्वाबों में रंगीन ख्यालों में गुजर गए। चौथे रोज जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा कॉलेज के गेट पर वही लड़की मेरा इंतजार कर रही है। भाई
0: हेलो प्रिंस, क्या हाल है आपके?
1: हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए आपका क्या हाल है। और हाँ प्लीज सबसे पहले अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम? अजी, मेरा नाम पूछकर क्या करिएगा। वैसे आप मुझे रुबीना कह सकते हैं।
1: रुबीना, उफ, कितना प्यारा नाम है, जैसा नाम है वैसी ही शान है।
0: क्या मतलब?
1: जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। बोलिए मुझ नाजी से क्या काम है, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ।
0: मुझे आपसे सिर्फ एक काम है कि आप मुझे शाम को इंग्लिश पढ़ा दिया करें, और ये भी बता दीजिए कि आप मेरे घर आना पसंद करेंगे या मैं आपके दरे दौलत पर हाजिरी दिया करूं।
1: ठीक है, जो आपको बेहतर लगे।
0: तो फिर ठीक है, शाम को 6 बजे मैं आपके घर आ जाया करूंगी।
1: और इस तरह रूबीना से मेरी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पढ़ाई के बहाने रोजाना रूबीना और मैं घंटों बातें करते, बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला मोहब्बत में तब्दील हो गया।

0: इन रंगीन लम्हात को साल भर का भी वक्त गुजरने नहीं पाया था कि अचानक रूबीना एक शाम मेरे घर आई। तुम्हारी ये हालत, बताओ क्या हुआ, प्लीज बताओ ना।
1: प्रिंस, बस ये पूछो क्या ना हुआ जो मैं बताने जा रही हूँ। क्या तुम उसको सच जानोगे, हकीकत समझोगे और क्या मेरी बात सुनकर बर्दाश्त कर सकोगे?
0: आखिर फिर भी बताओ तो सही, क्या हुआ मेरी रूबीना को?
1: पापा ने आज ही मुझसे कहा कि तुम कल अमेरिका अपने भाई के पास पढ़ाई के लिए जाओगी।
0: क्या?
1: और अब मेरी तमाम तैयारी मुकम्मल है। बहुत मुश्किल से चंद लम्हे निकाल कर तुम्हें बताने आई। मेरे प्रिंस, हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना।

0: जावेद और उसके घरवाली हैदराबाद के रहने वाले थे। जावेद बीएससी मुकम्मल करके अपनी बाकी पढ़ाई अमेरिका जाकर मुकम्मल करना चाहता था। उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए उसके वालदेन ने उसको अमेरिका भेज दिया था। अमेरिका रहते हुए जावेद ने मुझे बहुत याद रखा था। जावेद के खतूत बहुत पाबंदी से मेरे नाम आते। एक रोज एक बहुत तवील खत मेरे नाम आया। जावेद ने अपने खत में लिखा था, दोस्त, जिस कॉलेज में मैं ज़ेर तालीम हूँ उस कॉलेज में एक हिंदुस्तानी लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम नीलोफर है। नहायत खूबसूरत, नहायत ज़हीन, नहायत स्मार्ट। एक दिन जब मैंने अपना तारुफ कराया और उसको ये बताया कि मैं इंडियन हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने खुद ही मुझसे आकर दोस्ती कर ली और दोस्ती भी हमारी काफ़ी बुलंदी पर पहुँच चुकी है। खतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैंने जावेद को लिखा, यार मुझे अपनी दोस्त का फोटो तो भेजो ताकि मैं भी तो देख सकूं कि मेरे दोस्त की तकदीर का सितारा कैसा है। मगर जावेद हमेशा मुझे यही लिखता रहा, नीलोफर फोटो देने से इनकार करती है। कहती है कि तुम मेरा फोटो लेकर क्या करोगे, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी हूं। कल जावेद का मुख्तसर खत मिला। लिखा था, दोस्त, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और परसों मैं अपने वतन पहुंच रहा हूं। जावेद अब अपने वतन पहुंच चुका था। कल के जावेद और आज के जावेद में बहुत नुमाया फर्क आ चुका था। कहां कल का परेशान हाल जावेद और कहां आज का तालीम याफ्ता खूबसूरत खुशहाल जावेद। जावेद ने भाग दौड़ करके शहर में एक दुकान भी ले ली थी और उसमें अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोला था। उधर नीलोफर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने घर आ चुकी थी। मगर नीलोफर ने जावेद से वहीं अमेरिका में रहकर अपने मिलने के औकात और जगह तय कर लिए थे। उसने जावेद से इस बात का इकरार भी करा लिया था कि इन मुलाकातों का जिक्र आप ना अपने दोस्त से करेंगे न घर वालों से। मैंने जब सुना कि रूबीना भी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुकी है तो मैं उसके घर पहुंचा। मगर मालूम हुआ रूबीना एक हफ्ते के लिए अपने मामों के घर बैंगलोर गई हुई है। मैंने एक हफ्ता बहुत बेचैनी से गुजारा। एक हफ्ते बाद फिर मुलाकात की गरज से रूबीना की घर की तरफ चला। मगर रूबीना ने आवाज सुनने के बाद भी मेरी तरफ देखना गवारा नहीं किया और सीधी निकली चली गई। रूबीना के इस रवैये से मुझे बेहद सदमा हुआ। मैंने तो 3 साल कैसे रूबीना की तस्बीह पढ़ पढ़ कर गुजारे, पर आज जब हमारे प्यार की शमा रोशन होने का वक्त आया तो उजाले ने ही हमारा साथ न दिया। क्या हमारी तकदीर में अब हमेशा अंधेरा ही रहेगा? वक्त अपनी गर्दिशी अय्याम की चक्की चलाता रहा। जावेद की मेरी मुलाकातें होती रहीं और उधर जावेद की नीलोफर से मोहब्बत शबाब पर रवा दवा रही।
1: क्या क्या

जावेद, अब तुम जल्दी से अपनी अम्मी को हमारे घर भेजो। और देखो, ये बात अभी राज ही रहनी चाहिए। जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जमाना देखेगा और कहेगा कि जोड़ी हो तो है।

0: मैंने इस दरमियान सोचा कि जावेद की अम्मी से पूछूं, नीलोफर का घर कहाँ है, नीलोफर कैसी लड़की है। मगर ये सोचकर खामोश रहा जब जावेद ने अब तक मुझसे कुछ नहीं बताया, तो मैं उनसे क्यों पूछूं। जावेद की शादी तय हो गई थी, न मालूम क्यों मेरे दिल पर एक बोझ सा था। मेरी कई मर्तबा अजीब सी कैफियत हुई थी, एक तरफ खुशी और एक तरफ एक अनजाना सा खौफ।
1: अरे दोस्त, क्या बात है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? बारात में नहीं चलोगे?
0: नहीं जावेद, मैं बारात में नहीं जा रहा हूं, बल्कि वलीमे की तैयारी मुकम्मल करता हूं ताकि कल परेशानी ना हो। और हाँ, जब भाभी आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा तो मैं ही देखा करूंगा ना। जावेद की बारात अब मुख्तार साहब के घर पहुंच चुकी थी। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया, खूब खातिर तवाजु हुई, खाने से पहले निकाह हुआ। चारों तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो की आवाजें आती रही। मुबारकबाद का सिलसिला इतना तवील था कि खत्म ही ना होता था। शाम को दुल्हन रुखसत होकर जावेद के घर आ गई। लोगों को दूर दूर तक ये वहमोगुमान भी न था कि कल का मुफलिस जावेद आज के शोहरत याफ्ता शहर के सबसे बड़े अमीर घर की बेटी को दुल्हन बनाकर लाएगा। औरतों की आवाजें थी, मुबारक हो दुल्हन, मुबारक हो। बच्चों का अजीब गरीब शोर था। कोई औरत कह रही थी दुल्हन चांद का टुकड़ा है, कोई कह रही थी दुल्हन जन्नत की हूर है, कोई कह रही थी हमारा जावेद क्या चांद नहीं है। एक हफ्ते बाद जावेद मेरे कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाकर बोला,
1: दोस्त, तुम्हारे वहां सहना

0: कैसे शुक्र अदा कर पाऊंगा जो तुमने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं।
1: बेवकूफी की बातें मत करो यार, ये भाइयों का मामला है। खैर छोड़ो, क्या आज भी हमारी भाभी को नहीं दिखाओगे?
0: अरे यार, मैं तुझे क्या तेरी भाभी को दिखाऊंगा? तूने तो खुद ही मुझसे कहा था कि जब भाभी आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा तो तू ही देखा करेगा।
1: मैं जावेद के साथ उसके घर पहुंचा। जावेद की अम्मी ने मेरी पलाई ली, बहुत सी दुआएं दी और कहा, तुमने तो जावेद की शादी में कोई सेहरा भी नहीं पड़ा, तो कोई फिल्मी नगमा ही सुना दो। ये सुनकर मेरी अम्मी भी आ गई। सब हमजुबान होकर गाने की फरमाइश करने लगे।

0: के काम आ। जावेद की अम्मी ने दुल्हन के मुंह पर से घूंघट हटा दिया तो मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मेरे सामने दुल्हन की शक्ल में नीलूफर नहीं बल्कि रूबीना थी। रूबीना।
1: दोस्त, क्या तुम्हें दुल्हन पसंद नहीं आई?
0: नहीं जावेद, ये बात नहीं। माशाल्लाह दुल्हन इतनी खूबसूरत है कि उसके हुस्न की चमक ने मेरी आंखें चकाचौंध कर दी। जावेद, तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। प्रिंस, तुम ही कम नसीब हो जो तुम्हारी रूबीना तुम्हारे दोस्त की दुल्हन बन बैठी।

0: आई।
1: इसमें ना कसूर रूबीना का था न मेरी खता। रूबीना उसके नाना के यहाँ का नाम था और नीलोफर उसके दादा के यहाँ का। अब पूरी जिंदगी है और ये नगमा।

सामिन भी आप ये गीतों भरी कहानी सुन रहे थे तकदीर, पेशकश परवीन सलाम फरीदी की थी, तहरीर शमीम उस्मानी की, हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुनीता शाह आबादी, शमीम उस्मानी और आदम शाह। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेशकश फिल्मी नगमे प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाजों में, दुश्मन फिल्म का नगमा, नगमा निगार इंदिवर, मौसीकार उत्तम सिंह।

نقاب رخ سے اٹھائے کیوں وہ بہار حسن لٹائے کیوں.

अजीज नजर बबन खान साथी को आप सुन रहे थे फिल्म थी शंकर हुसैन, मौसीकार थे खयाम। और समझ लीजिए आप सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश दुश्मनी फिल्म का नगमा सपनावस्ती और साथियों की आवाजों में।

और सामने सुनिए उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा की आवाज़ों में ट्रैफिक सिग्नल फिल्म का नगमा, मुझे कारण संदेश शंदीलिया।

और सामिन ये सुनिए सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में दिल से फिल्म का नगमा, नगमा निगार गुलजार, मौसीकार ए आर रहमान।

और सामिन प्रोग्राम के आखिर में सुनिए दुश्मन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: चलो चलो। क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
1: बहुत अच्छा दुश्मन। क्या
0: अच्छा लगा ना?
2: चल चल चल चल।
0: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
1: पैसे निकाल।
0: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
1: जा।
0: थैंक यू।
1: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
0: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है।

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: तो काका तो, मैं बोलता फूलवती काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तुमने खत्म कर दिया।
2: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

दुश्मन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सामने इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

रजिया अहमद से खबरें सुनिए। भारत और बरतानिया के दरमियान जाम इकतसादी तजारती समझौता आज से नाफिज हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि समझौते से भारत के सनअतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवसत दर्जे के सनअती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है और यह भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से आवाम का भरोसा ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के रावलकोट इलाके में हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। फलस्तीन ने लड़ाई से मुतासरा मुल्क में 3 अहम तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत के फैसले का खैरमकदम किया है। अमेरिका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब नए हुरमूज व अक़वामी जहाज रानी के लिए खुली हुई है, लेकिन ईरानी जहाज़ों के लिए ये बंद रहेगी। और

हुई फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इक्तसादी और तजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक समझौता जो आज से नाफिज हुआ है भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने यह बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि CETA से भारत के किसानों, कारोबारियों और MSMEs को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज़्यादा रसाई हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशावराना खिदमात और जिद्दतराज़ी में इश्तराक को वसअत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज़्यादा आमदोरफ्त में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरका खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत जामे इक़्तिसादी तजारती समझौते के तहत तजारत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है जिसके दायरे में सभी रियासतें या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फ़रोग देने से मुतालिक कौंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इशराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बलकमामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी गई। इस मौके पर गैर मुल्की तजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल के अहलकारों के अलावा चेन्नई में बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर सुतपा चौधरी भी मौजूद थे। डॉक्टर चौधरी ने समझौते को बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक अहम संग मील करार दिया। इस सिलसिले में तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा अखबार में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इक्तसादी तजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरद मौके फराहम करेगा और 2047 तक विकसित भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते से माशरे के हर तबके को बाख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के आवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। इसके अलावा इससे न सिर्फ भारत के बरामदकारों को फ़ायदा होगा बल्कि वाइट कॉलर सर्विस से वाबस्ता लोगों के लिए भी ये सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत बरतानिया के लिए लगभग भारत की सभी बरामदी मसनूआत को महसूलात से छूट हासिल होगी जिससे छोटे ताजरों, किसानों, माहीगिरों और दूसरे शोबों के लिए ज़बरदस्त मौके पैदा होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज से नाफिज होने वाला भारत बरतानिया जामे इक़्तिसादी और तजारती मुआहदा भारत की माशी तरक्की और आलमी शराकत दारियों को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है। जनाब सिंह ने उजागर किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ऐसे मुआहदे कर रहा है जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करते हैं, आलमी मौके को फ़रोग देते हैं और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हैं। सार्फीन के उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इक़्तिसादी और तजारती मुआहदा एक अहम कदम है जो किसानों और ज़रई शोबे का तहफ़ करते हुए मुल्क के इक़्तिसादी मफाद को मुस्तहकम करता है। सनती इदारों ने भी भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहदा FTA को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफ़र में एक तारीखी संग मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मस्कूरा मुआहदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फ़रोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। उन्होंने भारत बरतानिया जामे इक़्तिसादी और तजारती मुआहदे के नफाज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोज़गार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने पूरे महाराष्ट्र के

सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पेश हैं हम आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा फरमाइशी

कार्यक्रम लेकर आपकी पसंद। कोई देर ना करते हुए शुरू करते हैं साजन फिल्म के साथ ये गीत, आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। रघुनाथपुरा गंगानगर से लालगिरी स्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, पुरवैया अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, निभि शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, गांव सिरसिला फवारा चौक जिला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल, कार्तिक सोनगरा, यहीं से सचिन चौहान, संगरिया से श्याम मिठा और सुमन मिठा, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, भाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, बोरखेड़ा पित्रमल, उज्जैन MP से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, कुश मुणत, गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़ और लीलाधर स्वामी, यहीं से किरसन मायल, कीडू राम जोया, हनुमान सहारण, सुनील पाईवाल शर्मा, बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता, हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, कीर्ति प्रियांशी और इनके परिवार के सदस्य, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर, श्रीमती सरिता प्रणीता सिद्धांत ग्वाणकर, अर्जुन ग्वाणकर और इनके परिवार के सदस्य, नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहानी, बिहारी विजय

कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री, मोहनलाल सुथार और महावीर मिस्त्री। नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश और खन्ना परिवार, ये लिखते हैं सबिदो सिटी हरियाणा से। बंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी और आशीष सूद इनके साथ हैं विश्वजीत। आप सभी ने सुनना चाहा है तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

0: हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित सेजू, सीनियर पीडियाट्रिशियन बारमेर से, जो बच्चों को मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी आ गया है, ऐसे में बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं?
1: अधिकतर मामलों में साधारण सर्दी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सही देखभाल न करी जाए तो कुछ बच्चों में यह जटिलताएं विकसित हो सकती है। जैसे संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है, या साइनस तक पहुंच सकता है, जिससे चेहरे में दर्द या नाक से गाढ़ा स्त्राव आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकती है। इसलिए भले ही सर्दी आपको सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जटिलताओं से बचाव होता है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो पाता है। धन्यवाद।
0: ये संदेश जनहित में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
2: कुमार सानू की आवाज में लीजिए सुनिए आशिकी फिल्म का गीत, आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। चंडीगढ़ से सतीश अनेचा, बिमला अनेचा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश कुमारी, भाव्या देवांगन। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी। गांव बीरमाना सूरतगढ़ से जगदीश शर्मा और इनके परिवार के सदस्य। गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, आमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया, ईवा धारणिया। गांव आरायण से डॉक्टर बनवारीलाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम चालिया। ये खत हमें मिला है गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। गांव दौलतपुरा से गंगानगर से शोलालची बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जटिलताओं से बचाव होता है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो पाता है। धन्यवाद।
1: ये संदेश जनहित में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
2: सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव। गांव फरांसी से राजकुमार, प्रमोद और सौरभ। गंज टुंडवारा से शमसुल, कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग। रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, वीरक, जतैग वीरक, मीका वीरक। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार। साधुलशहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम धड़कन, आवाज़ें अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की।

0: हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित सेजू, सीनियर पीडियाट्रिशियन बारमेर से, जो बच्चों को मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी आ गया है, ऐसे में बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं?
1: अधिकतर मामलों में साधारण सर्दी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सही देखभाल न करी जाए तो कुछ बच्चों में यह जटिलताएं विकसित हो सकती है। जैसे संक्रमण कान तक फैल सकता है, जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है, या साइनस तक पहुंच सकता है, जिससे चेहरे में दर्द या नाक से गाढ़ा स्त्राव आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकती है। इसलिए भले ही सर्दी आपको सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साईं गायकवाड़, नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी राखी तृप्ति, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दाइमा, आप सभी ने ये खत लिखा है केसरी सिंहपुर से। असम से हितेंद्र दास और मुजफ्फरनगर यूपी से रेणु शर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में श्रीमान आशिक फिल्म का ये गीत।

भाद्रा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन कुमार, साहिल, राघव, उपेश कुमार, यहीं से ममता, कीनू, अक्षु और इनके परिवार के सदस्य। चक 7 डीबीएन भादवाली ढाणी से टेकचंद सारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण बिटिया, योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह, हरनेक सिंह, कृष्णलाल राहड़। गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसप्रीत। कुंभार गली श्री रामपुर से

अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले। सांगली के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ, सुभाष चिंपा ने सुनना चाहा है। कलाना से एटा रोड, गंज डुंडवारा यूपी से बीपी गौतम, सरिता गौतम। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निपी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। आप सभी ने सुनना चाहा है देवदास फिल्म का ये गीत। आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल और साथियों की।

चक 58 NP रायसिंह नगर से सुल्तान राम मलखड़ सरस्वती देवी हरबंस लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित कुमार सुरेंद्र कुमार मीनाक्षी मोनिका गीतांजलि और इनके परिवार के सदस्य। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही महराज जहां परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर परवीन ग्रोवर नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे संजय और बेबी किट्टू। हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा

येलोर दिव्यांशी विश्वकर्मा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी ने सुना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम 1942 ए लव स्टोरी।

श्रोताओं, आज के आपकी पसंद कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया। प्रस्तुता मैं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। इस गीत के साथ ही अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

युवा श्रोता, अभी ये वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरत का की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर।

चौपाल कार्यक्रम में आज पत्रोत्तर के अंतर्गत श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप और ईमेल पत्रों पर ये कार्यक्रम आधारित होगा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे रात 8 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप ही के टेलीफोन फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनभावन आप सुनेंगे रात 10 बजे। प्रस्तुता होंगी स्मृति बोहरा। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

हम आकाश वाणी सूरतकर की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शिव भास्कर, 5 मिनट हो चुके हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम सराय की।

ठोक माहिती। सामेईन दी खिदमत च डी एस संधू दा आदा। सामेईन सब कोलों पहलों पेश है साडे अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज दे साडे प्रोग्राम दा आगाज़ होसे सईं मोहम्मद जुम्मन दी आवाज़ च हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद दे सूफियाना कलाम नाल। इनकोलों बाद मोहतरमा प्रीतम चावला पेश करेसन अपनी एक कहानी ते प्रोग्राम दे आखिर च सईं सलीम इकबाल पेश करेसन सईं बेदल सरहदी दी एक गज़ल। सामेईन इते है साडे अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज दे प्रोग्राम दा आगाज़ करन दे पहिलां सई मोहम्मद जुम्मन की आवाज़ च हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के सूफियाना कलाम नाल समात फरमाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराई की। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि जनता मतदान कर लोकतंत्र में अपना भरोसा बताती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वर्तमान और पूर्व विधायकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। संसद पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं राज्य विधानसभाएं गांवों, नगरों और परिवारों की आशाओं, सपनों और चिंताओं को की आवाज है। यही विधानमंडलों का मूल स्वर और गरिमा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से, अपने निर्वाचकों से विनम्र होकर मिलने और धैर्य तथा संवेदनशीलता से उनकी बात सुनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके सार्थक और नीतिगत सुझावों को जरूर अमल में लाना चाहिए। इससे बड़ा बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति विधानमंडलों भवनों की भव्यता में नहीं बल्कि उनमें होने वाले गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चाओं में निहित है। इससे पहले

0: समापन सत्र को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सभी का मूल उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश का विकास है।
1: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। सम्मेलन में पूर्व और वरिष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इससे देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर नक्शे पर लाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2: ये एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस योजना की अवधि में लगभग 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। इससे लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि निर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। चुनाव, मीडिया और मतदाता शिक्षा को लेकर आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान तथा एनएलयू जोधपुर की ओर से इसका आयोजन किया गया। एचसीएम रीपा में हुई इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि युवा प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है। स्कूलों और कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसके लिए राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए गए हैं।
3: हमारे जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आज गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुआ। 5 दिन तक चलने वाले इस अभियान में उच्च जोखिम वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाएगी। ANM, आशा सहयोगिनियां और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत का ब्यौरा रखेंगे। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम इसके वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। श्री खेवसर ने कहा कि अधिकतर मामलों में किसी तरह के संक्रमण और दवाओं के रिएक्शन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
4: जयपुर से एक विशेष दल आया, यहाँ पर हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारे पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब और जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।

0: विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रभात फेरी, रैली और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करियर मार्गदर्शन सत्र भी रखे गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके कौशल विकास पर बल दिया गया। समारोह में कौशल, रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री के विश्नोई ने कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री विश्नोई ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी, ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का, आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे, सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुर्वेद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में 100श्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद और योग को दुनिया भर में नई पहचान दी है। उन्होंने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयासों पर खुशी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
2: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता है।
0: राज्य सरकार सरकारी स्कूली भवनों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आज जयपुर जिले में विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण कर भवनों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। श्री यादव ने अधिकारियों को विद्यालय भवनों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में लोग मॉनसून के दूसरे दौर के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में हुई बारिश से गर्मी से राहत रही। बाकी स्थानों पर लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। विभाग ने आज 18 जिलों के लिए गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियों का येलो अलर्ट बताया है। जयपुर में पहली बार कल विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। इसमें सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने, फर्जी एजेंटों से बचाव और प्रवासियों के कल्याण, निवेश तथा पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में अगले महीने ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी। 6 और 7 अगस्त को होने वाली इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी इंतजाम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने जनता की सेवा को जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं की बात धैर्य और संवेदनशीलता से सुनने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। राज्य में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू। अधिक जोखिम वाली स्त्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में मॉनसून के दूसरे दौर के सक्रिय होने के आसार के बीच 18 जिलों के लिए बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिला पिछले महीने राजनीतिक

0: प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष चर्चा में रहा। पीएम किसान उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह पाली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें शिरकत की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने नेत्रा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से संवाद किया तथा शिविर के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल सुमेरपुर में भी शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों में चयनित 763 नवनियुक्त युवा युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत जिला स्तर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आशा एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क कर आमजन को परिवार नियोजन साधनों और स्वस्थ परिवार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। ये गतिविधियां 18 जुलाई तक चलेंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम पाली के लाखोटिया उद्यान में किया गया। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्काउट गाइड और आमजन ने कार्यक्रम में भाग लेकर योग किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के जन कल्याण के थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने छोटी छोटी बीमा योजना लाकर आमजन को सुरक्षा प्रदान की है। हर घर नल के तहत 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया है। अंतिम छोर तक के व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 15 जून से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान चिकित्सा कर्मी, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर दस्त रोग से बचाव, हाथ धोने की सही विधि, स्वच्छ पेयजल के उपयोग और ओआरएस तथा जिंक के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों को ओआरएस पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों सादड़ी के दौरे पर रहे। वे सादड़ी में शिवनगरी में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 12 ज्योतिर्लिंग महिमा तथा 21 कुंडीय महारुद्र महायज्ञ रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारम्भ समारोह बाली के कोट बालियान ग्राम पंचायत में किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने कोट बालियान गांव के खेल मैदानों में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। टेक्सटाइल उद्योग की पहचान रखने वाले पाली अब पैकिंग बैग का नया केंद्र बनता जा रहा है। लघु उद्योग भारती की पहल पर साड़ी, सलवार सूट सहित विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। खास बात यह है कि बैग निर्माण में सिलाई कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा घर पर ही किया जाता है। जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बाजारों, पार्कों, हॉस्टल सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिजर्व पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने महिलाओं को सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर सम्मानित किया। इसी के साथ पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपे से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जनतारी सेवा ने जन नुमाइंदारी सब मोटी जिम्मेदारी बताया। मतदाताओं री बात धीरज और संवेदनशीलताओं सुनने री अर्ज करी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

0: और मोबाइल फोन निर्माण समेत कई अहम मुद्दा माते मोहर लगाई। राज्य में आस वाली महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो सघन स्क्रीनिंग अभियान शुरू, बत्ती जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएगा। और प्रदेश में मानसून रा दूजा दौर रे सक्रिय होने रा आसार रे बीच 18 जिला सरू बिरखारो अलर्ट। समाचार रे साथे मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहो है के जनता मतदान करने लोकतंत्र में आपरो भरोसो बतावे है, वना जन नुमाइंदाओं जनता रा ई भरोसा ने बनाए राखण सारू पूरी ईमानदारी निष्ठा और लगन रे साथे काम करन री अर्ज करी। श्री राधाकृष्णन आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा रा 75वां साल रे मौके विया मौजूदा और पहली रा विधायिका रा सम्मेलन में बोल रिया हा। उपराष्ट्रपति कहो के राज्य विधानमंडल भारतीय लोकतंत्र री धड़कन है, संसद पूरा देश री आशावां री नुमाइंदगी करे है, वठे राज्य विधानसभा में गांवा नगरां और परिवारां री आशावां सपना और चिंतावां री आवाज़ है। यही विधानमंडलां रो मूल स्वर और गरिमा है, वना जन नुमाइंदाओं आपरा वोट देवण आलाओं नमने मिलन और धीरज और संवेदनशीलता रे साथे वारी बात सुनन री अर्ज करी। उपराष्ट्रपति कहो के जन नुमाइंदा चाहे सत्ता पक्ष रवे चाहे विपक्ष रा, वारा सार्थक और नीतिगत सुझावां ने जरूर काम में लावना चाहिए, इणु मोटो बदलाव आवे है। वणा कहो के लोकतंत्र री ताकत विधानमंडला रा भवना रे शानदार होवणो नहीं है, बल्कि वामाय गुणवत्तापूर्ण आचरण और चर्चा वामाय है। इणु पहला समापन जलसा ने राज्यपाल हरिभाव बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संबोधित करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के जन नुमाइंदा रा विचार न्यारा न्यारा वह सके है, फिर उन सगणा रो मूल मकसद जनता री भलाई है।
1: मैं उन सभी पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने विचार अपने अनुभवों और अपनी जनसेवा से इस सदन की गरिमा को निरंतर बढ़ाया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहां विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य हमेशा जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास होता है, यही लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र संस्कृति राजस्थान की पहचान रही है और आगे भी बनी रहेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में शिरकत करी, सम्मेलन में पहली रा 18वां विधायका रो सम्मानी करी जियो। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन निर्माण योजनावां ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में आज भी मीटिंग में वाराणसी में दो एलिवेटेड कॉरिडोर बनावण रा प्रस्ताव माथे मोहर लागी है। बैठक रह पछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने फैसला की जानकारी दी। वणा बतायो के सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 सारू 1,27,500 करोड़ रुपया रा बजट ने मंजूरी दी रही है। इणु देश ने ग्लोबल सेमी कंडक्टर नक्शा माथे लावण में मदद मिलेला।
2: ये एक ऐसा इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत ही क्लीन फैक्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्री सारी एयर कंडीशन होती हैं, तो यूथ को बहुत अट्रैक्ट करती है। यंग पर्सन्स जो इसमें काम करते हैं उनमें से कई के साथ इंटरेक्शन हुआ है। जिस तरीके से इस फैक्ट्रीज में काम करते हैं आज तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 25 लाख का रोजगार है। 2.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
0: मंत्रिमंडल 62,500 करोड़ रुपया रा बजट रे साथ है मोबाइल फोन विनिर्माण योजना ने मंजूरी दी है। श्री वैष्णव कहो के आ योजना आवता 5 साल में लागू करी जाएला। ई योजना री भगत में कोई 39 लाख करोड़ रुपया रा मोबाइल फोन बनाया जाएला, इणु कोई 60,000 लोगों ने सीधी नौकरियां मिलन री आस है। मंत्रिमंडल यूरिया सारू राष्ट्रीय निवेश नीति ने मंजूरी दी है। इनरो मकसद यूरिया हल्का माय नुआ निवेश ने बढ़ावो देवणो है जिणो आत्मनिर्भरता रो लगस हासिल करियो जा सके। चुनाव मीडिया और मतदाता शिक्षा ने लेर आज जयपुर माय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी। नवी दिल्ली रा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और NLU जोधपुर का न्यू इनरो आयोजन करीजियो। SCM रिपा माय भी ई संगोष्ठी माय बोलता मुख्य चुनाव अहलकार नवीन महाजन कहो के युवा प्रजातंत्र रो अहम हिस्सो है, स्कूल और कॉलेजा में मतदान प्रक्रिया रा बारा में जागरूकता बधाई जावे। इसारू राज्य में 25,000 इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाई जा है।
3: हमारे जो यंग वोटर्स हैं

0: खास तौर पे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको किस तरह से इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के जरिए प्रजातंत्र का अहम हिस्सा बनाया जाए, इसी की कड़ी में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे उनका गठन किया जा रहा है और उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 25,000 ऐसे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में अब तक गठित किए हैं।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश भर में आज आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य जांच रो मोटो स्क्रीनिंग अभियान शुरू हुई हो। 5 दिन तक चलन वाला ये अभियान में ऊंची जोखिम वाली महिलाओं की खास निगरानी करी जाएगा। ANM आशा सहयोगिनियाँ और CHO गर्भवती महिलाओं की सेहत रो ब्यूरो रखेला। ई बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर आज बांसवाड़ा में मीडिया साथ बतल में कहो कि सरकार आसवाड़ी महिलाओं का स्वास्थ्य ने लेर घनी संवेदनशील है। न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे अजय वी प्रसूता मारी मौत रा सवाल माथे वणा कहो कि विशेषज्ञ की टीम ने वास्तविक कारण की जांच कर रही है। श्री खीमसर कहो कि घनकरा मामला में किणी तरह रा संक्रमण एर दवाइयां रा रिएक्शन अजे तय सामने नहीं आया है।
2: जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारी पूरी मीटिंग हुई है। जो दो की डेथ हुई, हाई BP और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से दो की डेथ हो गई है। हमने स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे।
1: विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके आज प्रदेश में न्यारा न्यारा आयोजन हुआ। प्रभात फेरी, रैली और दूजा जागरूकता कार्यक्रम री मार्फत नौजवाना ने आत्मनिर्भर बनन रो संदेश दीजियो। साथ ही न्यारी न्यारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैरियर मार्गदर्शन सत्री राखी जा। जयपुर में हुआ कार्यक्रम में नौजवाना ने स्वावलंबी बनावन सारू वहाँ कौशल विकास माथे जोर दीजियो। जलसा में कौशल रोजगार और उद्यमिता राज्य मंत्री KK वैष्णोई कौशल विकास रा हल्का माए चोखो काम करने वाला नौजवाना रो सम्मान करियो। जलसा माए बोलता श्री विश्नोई जवाना ने कौशल सिखावण ने जोड़ने रोजगार रा मौका मुहैया कराउण री सरकार री प्रतिबद्धता दोहराई।
3: पिछले 2.5 वर्ष में राइजिंग राजस्थान में पूरे विश्व से और देश भर के इन्वेस्टरों को यहाँ पर इन्वाइट भी किया, अलग अलग उद्योगों के लिए आकर के यहाँ पर अपना पैसा भी लगाए और आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से कौशल प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी मिलने में भी ITIs कॉलेजेस कैसे अपग्रेडेशन ऑफ PM सेतु वाली स्कीम से ITI का आने वाले समय में रिफाइनरी जैसे बड़े उद्योग अपने प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए एंसिलरी प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेंगे। सोलर का बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर चल रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुर्वेद हल्का में आधुनिक तकनीक काम में लेवन माथे जोर दियो है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 रा उद्घाटन जलसा में बोलता श्रीमती मुर्मू कहो कि सरकार आयुर्वेद और योग ने दुनिया भर में नोए पिछाण दी है। वना आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा री प्राचीन परंपरा ने वैज्ञानिक मानका माथे स्थापित करण री कोशिश माथे खुशी जताई। राष्ट्रपति कहो कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा रा वैश्विक मानकीकरण ने मजबूत करण सारू विश्व स्वास्थ्य संगठन रे साथे मिलने काम करे।
4: आयुर्वेद की इस कलुषित परंपरा के मानकीकरण का और इसे साइंटिफिक वैलिडेशन के आधुनिक वैश्विक पद्धतियों में से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी एविडेंस जेनरेशन और आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को समकालीन तकनीकों तथा मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स से जोड़ने के दिशा में प्रभावी योगदान दिया जा सकता।
1: और अब मौसम। प्रदेश भर में लोग मानसून रा दूजा दौर रे शुरू होने रा इंतजार कर रिया है। फिर वहीं लाडला 24 घंटा में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में भी बिरखाओं गर्मियों आराम मिलियो है। बचौड़ी ठोड़ा माथे लोगों ने गर्मी और उमस रो सामनो करनो पड़ रियो है। मौसम महकमा रे मुजब मानसून एक कर फिर सक्रिय वह रियो है। महकमो आज 18 जिला सारू गरज चमक रे साथ बिरखारी गतिविधियां रो येलो अलर्ट बतायो है। राज्य सरकार सरकारी स्कूल भवनारी हिफाजत ने लेर घनी सावचेत और संवेदनशील है। स्कूल शिक्षा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव आज जयपुर जिला में न्यारी न्यारी स्कूलों

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल। आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश चावरिया।

राम राम सा कार्यक्रम चौपाल सुनिया सगळ्या परिवाराने भाई राम मिश्र का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो, आज बुधवार को दिन है और बुधवार के दिन आज आपां कार्यक्रम ले रहे हैं पत्रुत्र। और इंग माथारा जका आयडा कागज है और जका आवार मेल आण ला रहा है और जका संदेश अपने स्टूडियो तक पुग्या है, तो बिंग में लिखड़ी जी प्रतिक्रिया है बा बांस्या और बिंग साबसियों आने वाला जगह कार्यक्रम है बे आपा थरपांगा। और वो कार्यक्रम जो को है आज बुधवार को है और बुधवार के दिन पत्रोत्तर जो को कार्यक्रम है इंग माँ की है का अपने प्रतिक्रिया हूँ संबंधित ही जका संदेश है, मेल है या फिर कागज जका है भी आप शामिल करा। पर जका भाई लोग अभी सजरा जुड़िया है अपने कार्यक्रम से और भी अगर आपने मेल करना चाहे तो मेल को पतो जो को है वो नोट कर सके ऐसा थे नोट करो aircourtgad@gmail.com ई पर थे मेल मांड्स को और मेल का माँ अपने प्रतिक्रिया जी की पिछला कार्यक्रम आंगी बा माननीय सा। पर आप एक भजन सुन लिया भक्त सही राम की आवाज गवा पछे आप कागज मेल जगह है वे शामिल करांगा सा। लियो सुनो थे भजन।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

बिल्कुल सर, थाने भक्त सही राम की आवाज़ का माँ वो भजन सुनायो और आपने ते ही भाई लोगों व्हाट्सएप के ऊपर संदेश जका है बेबी पुगड़ा है, तो वो पहलो जो आपने संदेश पुगे है गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ छू और लिखने वाला है वेद मिढा और अंगसागा है अलका मिढा। ये लिखा है कह सगड़ा ना पहल तो कह राम राम मारकानी छू तो अन्न भी मोकली सारी रामा श्यामा। और आगा लिखे कि चौपाल मारो बड़ो पसंदीदा कार्यक्रम है, इन्हें मैं रोजाना सुना और इमें का टेम टेम पर थी जिकी जानकारियां दियो जहाँ बाजार भाव है, मौसम की जिकी जानकारी है, फसलों लिए जिकी कीटनाशक को जो को चुनाव है या फिर जो को छिड़काव है या फिर जगह कृषि विशेषज्ञ है बन बुलागे थे जिकी जानकारी दिलाओ वे बड़ी लाभप्रद हुए। और इनके अलावा क्या गीता रो गजरो जो है वो बड़ो अच्छो लगे और इनमें राजस्थानी गीत जगह सुनाओ वे बड़ा मधुर हुए। और क्या आपने इनके अलावा जगह आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित दूसरा प्रोग्राम है जहाँ गोरबंद है या फिर मिट्टी की खुशबू है वे भी आने बड़ा बढ़िया लगे। तो मोकलो सारो धनवाद सा, कार्यक्रम सुनता रहो थे मिड्डा साहब और सुन के प्रतिक्रिया जरूर मानता रहो। थाने चौपाल कार्यक्रम में गीता रो गजरो है या फिर जिसकी जानकारियां हैं भी अच्छी लगे तो बिल्कुल भी वो फायदो उठाओ थे और सुन गए और मारते जरूर प्रतिक्रिया मांडे करो का वो जो को कार्यक्रम है इमाज की आप बात है अच्छी लगी। आगे भी थारा संदेश ही उड़ीक रहेगी ई संदेश के लिए थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश पुग्यो है अपने कुंडवाड़ी महाराष्ट्र से और लिखियो है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और रशिता। ये लिखा है कह राम राम सा तो अन्य भी मोकली सारी रामा श्यामा। और आगे भी यहाँ लिखियो है कह मेरे रोजाना आकाशवाणी सूरतगढ़ जो को कॉटन सिटी चैनल है बिना सुना माने बड़ो अच्छो लगे और इनके अलावा जितना भी थे कार्यक्रम पेश करो भी माने बड़ा दाय आवे सा। अलग अलग कार्यक्रमों का नाम लिखे है जहाँ अपने पंजाबी कार्यक्रम जो कमिटी की खुशबू है वो अपने अठे सूरतगढ़ से प्रसारित हुए तो वो भी आना बड़ो पसंद आवे। तो अंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद सा, दूर बैठ के थे अपने कार्यक्रम सूरतगढ़ का सुन ला रहे हो और इनके अलावा जिकी भी भाषा अपने अठे छू प्रसारित हुए कार्यक्रम का माध्यम से या फिर दूसरा भजना का माध्यम से और बात हमें पसंद आने ला रही है, समझ में आने ला रही है तो आप बहुत बड़ी बात है सावनकर। वो संदेश पुग्यो है अपने लिखने वाला है नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़ और रल मिल के लिखियो यार। ये लिखा है कि कार्यक्रम पेश करने वाला महाराकानी छू घनी घनी रामा श्यामा और इंगमा कहते जीता भी गीत सुनाओ बेबी अच्छा लगे और दूसरा कार्यक्रम जिया गीत गंगा है, गीतारो गजरो है, मिट्टी की खुशबू है ये सगड़ा जगह कार्यक्रम आपने सूरतगढ़ से प्रसारित हुए यानी अच्छा लगा सर। तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद सा। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम करोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु रणमिलगे आपने संदेश मांडियो है। ये लिखा है कि राम राम रामेश्वर भाई जी तो थाने भी मेरा कहने से मोकली मोकली रामा श्यामा सुभाष जी। और आगे लिखा है कि प्रोग्राम आपने जो को चौपाल है वो बढ़िया लगे इनमें पत्र उत्तर जो है वो लाइव सुन ला रहा हाँ बिल्कुल सा हूँ भी सहदे ही बैठी हूँ थर सामने बस फर्क ही तो ही है कह मेरे सामने माइक है और थर सामने रेडियो है कार्यक्रम जो है वो लाइव ही चलने ला रहे है और थाना अच्छा लगे ही वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। और अगले के पिछलो प्रोग्राम चौपाल सुनो भी मैं खेतियों संबंधित जितनी भी थे जानकारी दी वह बड़ी कामगी लागी और बढ़िया ही बाकी जहाँ प्रोग्राम में बाजार भाव है, मौसम की जिसकी जानकारी है वे बड़ी बढ़िया हुए और जरूरत के हिसाब से हमारा काम भी आवे और ग्रामीण क्षेत्र में कह एज की जानकारियाँ बड़ी कामगी हुए का आने वाला अपने प्रोग्राम में थे कि नाटक जो को है वो जरूर सुनाइयो मन है उड़ीक रहेगी और गीता गजरम में कह मेरी माता जी जिकी है वे गुड्डी देवी वे सुने और सुलोचना खमीर और कालूराम प्रजापति जी का जो भजन है भी आना अच्छा लगे तो जरूर सुनाइयो बिल्कुल आपने कार्यक्रम गीता और गजरो जो है बिंगमा भी आप कालूराम प्रजापति है या फिर सुलोचना खमीर है बंगा गीत भजन जो है भी आप चलाऊता रहे और सुने उसी लेकिन थारी जी की मांग है थारी फरमाइश चिकी है हूँ नोट कर ली और आने वाला कार्यक्रम में चाहे आप खबर दिन भी अगर कोई प्रोग्राम चल रहे नहीं तो बिंगमा भी आप गीत भजन भी चलाता रहा कार्यक्रम सुने करो और सुन के प्रतिक्रिया जरूर मांडे करो सा। ई संदेश के लिए थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश पुग्यो अपना ते तहसील भादरा अनूप शहर छू और लिखने वाला है गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, अशोक कुमार, उपेश कुमार, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फूसा राम मील, महावीर लोहरा भी रल मिल की लिखी है सा ना। और ये लिखा है कि मारे घरे का एक अनारगो बुंटो है और एक अमरूद को बुंटो है यानी दो बुंटा है एक अनारगो बुंटो और एक अमरूद को बुंटो है। कभी मैं फल तो बहुत आवे लेकिन फल बने को नहीं यार। अगर लिखे कोई इलाज बताओ सा तो फूल ना गिरे और फल बनना शुरू हो जाए बिल्कुल।

एक बड़ी समस्या है, कई बार हो जाए नी कि आप बड़ी खेचड़ करके कोई पौधा लगा लिया और फल वृक्ष जो कहे भी लगा बैठा, और भी बाद गमा बांगा फूल भी ला जाए, छोटा मोटा फल बनना भी शुरू हो जाए, लेकिन इन मौके पर जब अपन यहाँ लगे नहीं कि अब ये फल जो कहे अपन काम आसी खाएंगे, और बी टाइम के एक बार झड़ना शुरू हो जाए या फिर हम कोई हरी बीमारी कीटाणु जो कहे भी लाग जाए, तो थे आ बात लिखी है कि आपने फल तो बिंगा बहुत आया लेकिन फल कौन बन ला रहा। तो जरूरी बात तो आई है कि जब आपने फूल लागना शुरू है नहीं, बी टाइम के पानी धानी जो को विशेष करके ध्यान रखना जरूरी है, और अपना विशेषज्ञ आ बात कहे कि पानी जो को है वो एक बार फाल चकता टाइम और एक बार आपने फूल बनता टाइम थोड़ा सो कम करना जरूरी है सा। इनके अलावा बन थोड़ा सो खाद उर्वरक जो है वे भी टाइम पर देना जरूरी है, और बाकी जो की जड़ा है ना बे सरसों साहब थोड़ी सी खोद के देखो, अगर भट्ठा थोड़ा बहुत कोई बन रही है जाला बन रहा है तो बन निकाल के पासे कर दियो, और बिना अच्छी तरह पोली करके माटी ने भी थोड़ा बहुत जो को है उर्वरक जगह है खाद जकी है बात दो, फाड़ जरूर बनेगा और खाओगा भी है ना। संदेश मांडियो इन वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। गाम घमंडिया सुरतगढ़ से अपने ती संदेश लिख्यो है और लिखने वाला है जगदीश ढूकिया, प्रमीला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया, और अंगी नानी सी दोईती है ईवा धारणिया। ए सगड़ा रल मिलगे संदेश मांडी हरे लिखा है कि चौपाल पेश करने वाला महारा कानी सू घनी घनी रामा श्यामा। बिल्कुल सा थाने भी महारा कानी सू मोगली मोगली रामा श्यामा। और ये लिखा है कि इमें सुनाई जाने वाला जो लोक भजन है लोक गीत है भी बड़ा पसंद आने आ रहा है, पिछला बुधवार ने कहा भाई मुकेश द्वारा पत्र उत्तर में लोक भजन और लोक गीत सुनाया भी बड़ा पसंद आया। बिल्कुल सा आपने पत्र उत्तर गमा किया कि बीच बीच वाला थोड़ा बहुत सारो मार लिया, तो एक कोई लोक भी भजन है या फिर लोकगीत है भी सुना दें कई बार, और थाना पसंद आया इन वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। और अगा लिखे है कि इंगे सगे का मारो जो को संदेश है वो शामिल करियो तो धन्यवाद दियो है, और गुरुवार ने कह राजस्थानी नाटक जान सुनो बड़ो बढ़िया लाग्यो, और शुक्रवार ने कह भाई मुकेश की पेशकश में गीता रो गजरो सुनो वो बड़ो मन ने भाग्यो, और मारो संदेश जो है वो शामिल करियो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। बिल्कुल ढूकिया साहब आपने किया क्या पिछला प्रोग्राम जो कहे वो मुकेश भाई दियो, और बिगमा गीत भजन जो है बे भी चलाया, और संदेश जका है मेल जका है बे भी पढ़िया, और थारी प्रतिक्रिया जकी बांची, और इनके अलावा गीता और गजरो जो को आपने मुकेश भाई पेश करो वो थाने पसंद आयो, तो थारी जकी धन्यवाद है, थारो जो को संदेश जो को है वो मुकेश भाई सुनता होसी बाती पूग तो हो गयो सी, और मैं भी थारो धन्यवाद करा सा, और आगे भी थे जका संदेश है भी जरूर मांडियो, और नाटक जो को जान थाना अच्छो लगे आपने गोपीराम जी गोदारा बिंगा लेखक है ना देराम भाई, और बड़ो सांतरो नाटक को सुनो नाटक को जान वालों, अभी जान का टेम है, जान को मतलब बारात जकी है ब्याह शादियों को टेम चलने ला रही, और ये टेम क्या है कि ये नाटक जो है थोड़ा सा अच्छा लगे तो थाना अच्छा लगे ही वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद, और जरूर आगे भी उड़ीक रहेगी थारा संदेश की। वो आपने संदेश लिखकर भेजी है अपना नितबंध्या श्रोता है ढाणी लाल खां शू, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो और विनोद खान, ये भी लिखा है कि चौपाल माना बड़ो अच्छो लगे और मारी जान है, और माने के गीत सुनाया करो और नाटक भी सुनाया करो। बिल्कुल लाल खां सू अपने ढाणी सू वो जावेद जी थे मेल मांडियो है अपने संदेश मांडियो है, तो इनमा के है कि हाथ जोड़ गए प्रार्थना है कि प्रतिक्रिया जकी है बात पूरी मांडी करो सा है ना, इन्हें या तो थे रट रखियो सी पर फिर भी थे मांडो ना टेम निकाल के आ बड़ी अच्छी लगे। संदेश मांडो वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो, नाटक जो कह भी चलता रहा, अपने दूसरे गुरुवार ने भी नाटक चलावा और आखिरी गुरुवार ने भी नाटक की है कि चलावा, और इनके अलावा कई बार ये है कि कभी खब्बो पासो आ जाए तो बी टाइम कोई दूसरे बार ने भी चला देवा है ना मौको मिले तो कार्यक्रम सुने करो थे थारी जी की शिकायत है वह मैं यहाँ को सौ सैकड़ा जकी है वह दूर हो जाएगी। वो संदेश अपने ती पुग्यो है लिखने वाला है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांस वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश छू। आ लिखे कि चौपाल पेश करने वाला ने महारा कहानी छू घनी न घनी रामा श्यामा, और अने भी आप मोकली सारी रामा श्यामा दया सा, और आगे भी यहाँ लिखियो है किसान भाइयों को प्रोग्राम जो है वो बड़ो पसंद आवे माना उसी में लाभ उठावा, और खेतीबाड़ी संबंधी जो की सलाह है जानकारी है वह बड़ी लाभप्रद रहे। बिल्कुल धाकड़ साहब आपने किया कि कार्यक्रम में बातें जी की भाई बताई जाए भाई कट्ठे न कट्ठे जीवन का माँ चाहे खेती खड़ी इंसान है चाहे अपने स्वाभाविक रूप से अगर आप बिना काम में ले तो बड़ी कामगी हुए भी, तो जानकारी थाने देव अभी को फायदा उठाओ तो बढ़िया बात है, और सुन गए किसी जानकारी जी की बात थाने अच्छी लगी बा आपने संदेश का माँ प्रतिक्रिया में जरूर मांडी करो ताकि थोड़ा सो बेरो पाट जे नहीं तो बिंग साहब छू आगे भी मैं किया कि हौसला अफजाई हुआ ऐसा कई बार हो जाए कि थोड़ी सी थपकी मार देने तो बीच किया थोड़ा सा हौसला जागृत हो जाए है ना, और मैं भी यहीं आस में बैठा कि

हरा जगह कार्यक्रम पेश करे है भी भाई लोगों ने पसंद आवे और की तरिया जगह कार्यक्रम है भी पसंद आवे भी शूँ किया कि थारा संदेशा छूँ थारा मेल छूँ थारा कागजा छूँ पतो लागे और वो ही एक अपना कन माध्यम है तो जरूर मांडे करो सा वो संदेश पुगतो करियो धाकड़ साहब इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो मेरठ छू अपना ती दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी संदेश मांडियो है लिखे कै जद छूँ कै मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ केंद्र से जुड़ा हाँ बी टेम छू कै राजस्थानी भाषा समझण लग गया। वाह वाह की बात है गोड़ साहब बढ़िया बात है भाषा जकी है वह हर प्रांत की हर जिले की हर क्षेत्र की है ना अपन सीखनी चाहिए और अच्छी लागे ही वास्ते थारो मोगलो सारा धन्यवाद और समझण लग गया नहीं तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो भाषा को क्या समझणो है दिग्दर्शन जी क्या भाषा जकी है वह एक शब्दांगो मानस कहाँ का हुआ है लेकिन मन की जकी भाषा है प्यार की जकी भाषा है मुस्कान की और हंसी की जकी ठिठोली की जकी भाषा है वह हर मिनख समझ सके चाहे बुलाई वो किसी प्रांत के अंदर है किसी भाषा को इंसान हुए और थे मारसा के जुड़ रहे हो अब बहुत बढ़िया बात है ये जुड़ा रहो क्योंकि भाषा कोई कठी अबखाई कौन पैदा करे नहीं है ना बस दिलू मनू हिवड़ा छूँ लगाव राग के जुड़िया रहो और प्रतिक्रिया जी की वह जरूर मानता रे करो। आगा लिखे कि राजस्थानी भाषा में सामने वाला जगह अच्छा सामने जगह बैठा सज्जन है भी के ला रहे है तो सामने तो आज मेरा सामने तो की कौन सा आज अकेलो ही हूँ और थारे सागे अताई ला रही हूँ थारी लिखड़ी जी की बातें हैं भी हूँ बांचन ला रही हूँ पर अगले प्रोग्राम में होश कह के कभी दुगाड़ा हो जावा और भी हूँ बात गवा आ थारी जी की प्रतिक्रिया वह जरूर बान पढ़ के सुना से आंके आपने दिग्दर्शन जी जी कहे भी बात पूछा। वो अपना ती संदेश पुगे है गाँव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से लिखने वाले विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश युधु कड़वासरा कुंदन जाखड़ लीलाधर स्वामी कृष्ण मायल कीड़ू राम जोया हनुमान सहारण सुनील पाईवाल शर्मा ये लिखा है कि सच में कह ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तो कच्चो पा ली है। अच्छा सच बोलो बहुत बढ़िया विक्रम जी की है कि कार्यक्रम जितना भी अपना सूरतगढ़ से प्रसारित हुआ है ना वे सारा का सारा ज्ञानवर्धक की हुए है ना इसी तो कोई बात अपने सूरतगढ़ से या फिर रेडियो के माध्यम से कही जाए भी कौन जकी बात है वह कट्ठन कट्ठा कालजम ला जाए अपन तो बात बा क्यों जकी जिंदगी का माँ आगे बढ़ने के लिए या फिर जिंदगी जी की हवा सोरी निकल जाए या फिर खेती क्यारी की जकी बातें हैं या फिर घर गुआड़ की जकी बातें हैं बे करीजिए और बे बातें जकी है घर परिवार ने जोड़ना को काम करे ऐसा मनोरंजन के तौर पर थाने गीत भजन सुनावा बे भी किया क्या थोड़ा सो अपनों जो को मगज है ना वो सही रहे तो ये जकी बातें हैं रेडियो के माध्यम से थारती पुगे और थाने चौपाल खास करके अच्छो लगे तो थारो मोकलो सारा धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहे करो और आगा लिखे कि प्रत्येक किसान का चौपाल कार्यक्रम जो है वो जरूर सुनना चाहिए बिल्कुल थारी जी की बात है वा दूसरा भाई लोग सुनता हो सी तो जरूर कहो मानागा सा और मैं भी यही बात कहाँ कह चौपाल तो थे जरूर सुनी करो ना सामने भिड़ा बैठ के और आसे पासे ढोलिया डाल के और सगड़ा परिवार का छोटा मोटा दादो दादी नानो नानी काको बाबू मासी सब रल मिल के सुन सके सा कार्यक्रम इसी है अपनों चौपाल जका का वहाँ हर तबका का हर क्षेत्र की बातें जिकी है चाहे बोले छोटो है मोटो है या फिर खेत कैरी की जिकी बातें हैं घर गुवाड़ की जिकी बातें हैं ब्याह शादी की जिकी बातें हैं भी करीजे और एक माँ इसी कोई बात कौन करीजे जके जैसे यहाँ ना हो का अपने बाबू कार्यक्रम सुन ला रहे है या फिर जका बेटा है पोता है बे कोई इसी बात कही जर खड़े होकर चाल पड़ा कहीं नहीं इसी बात तो नहीं अपना रेडियो का माँ इसी कोई बात को नहीं वैसा है ना बातें जकी है भी अच्छी हुए और हर तबके की हर परिवार की है छोटा टाबरिया जका है बांगा बनाई लिखाई की जकी बातें हैं बांगा जीवन कौशल की जकी बातें हैं बिक्री जे अगां लिखियो है कि अठा बाजार भाव मौसम संबंधी जकी जानकारी है खेती किसानी की जकी बातें हैं भी बड़ी बढ़िया लागे और हमारे सगड़े साथी बेलियां की तरफ से थाने घनी घनी रामा श्यामा बिल्कुल आ रामा श्यामा जी की है मैं भी थाने ही दिवा सा महारा कहानी से महाराज जितना भी भयला कार्यक्रम पेश करने वाला बां कहानी से थाने मोकली सारी रामा श्यामा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला भी अपने ते संदेश मांडियो है और ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम सुन के घणो आनंद आवे और खेतीबाड़ी की कह नई नई जी जानकारियां दियो भी किसान भाई और बहना खातर बड़ी कामगी होवे इन चूँ कह आधुनिक खेती की तकनीक अपनाउन में मदद मिले फसल को जो उत्पादन है वो भी बढ़े और खर्चो भी घटे आगे भी यहाँ लिखे है कि मौसम जो है और इनके अलावा कीड़ा मकोड़ा नियंत्रण की जी जानकारियां बे भी दियो बे भी माने टेम पर मिल जाए तो बड़ो फायदो है जिस किसान भाइयों ने भी घणो लाभ हुआ सा चौपाल कार्यक्रम आगा लिखिया कि सचमुच किसानों खातर घणो उपयोगी है और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इतनी सुंदर सरल और प्रभावशाली प्रस्तुति खातर पूरी टीम ने घणोन घणो धन्यवाद सा आ महाराष्ट्र से मोताला से विजय सुरलकर आ लिखियो है तो बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहे करो सा और आपने हर कार्यक्रम में कोई न

कोई नई की जानकारी अब हर बार देवैया मियाँ तो चाहे खेतीहरा वास्ते है, खेत खलिहान है, या फिर चौपाल है, या फिर कोई और कार्यक्रम है, चाहे आप बारह सौ कोई जाने जान मिनक है बन बुला के भी कीज की अच्छी जानकारियां भी दे रहे और थाना चला गया वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। और आगे भी यहाँ लिखियो है कि आधुनिक खेती जुड़ गए जी आप तकनीक अपना गए अगर खेती करा तो बड़ी बढ़िया बात है। बिल्कुल आपने किया है कि अब धीरे धीरे आधुनिक तरीका भी खेती में अपनाना जरूरी है सा है ना, क्योंकि कोई टाइम का माज का पुराना तरीका हा बे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हा मानस का, लेकिन पानी धानी बचाना जका नया आधुनिक तरीका बे भी अपन ने थोड़ा सा संभालना जरूरी है, बस बन थोड़े से मगज में लेना जरूरी है। पानी जो है वो दिन बे दिन कम होने ला रहे है, और इनके अलावा अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती जकी है, जैविक खेती जकी है भी कहीं पाउंडो भरने की जरूरत है ना, पर्यावरण बचाने की अपनी जिम्मेदारी जकी है अब आपने निभानी जरूरी है सा। इतनी अच्छी जानकारी लिखी है तो थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो अपने तई एक संदेश लिखकर भेजो है, लिखने वाला है लिखियो है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और सगड़ो वर्मा परिवार बुरजहान।

कि एक अब धीरे धीरे आधुनिक तरीका भी खेती में अपनाना जरूरी है सा, है ना। क्योंकि कोई टाइम का माज का पुराना तरीका हा बे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हा मानस का, लेकिन पानी धानी बचाना का नया आधुनिक तरीका बे भी अपन ने थोड़ा सा संभालना जरूरी है, बस बन थोड़े से मगज में लेना जरूरी है। पानी जो है वो दिन ब दिन कम होने ला रहे है, और इनके अलावा अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती जो की है, जैविक खेती जो की है, भी कानी पाउंडो भरने की जरूरत है ना। पर्यावरण बचाने की अपनी जिम्मेदारी जी की अब आपने निभानी जरूरी है सा। इतनी अच्छी जानकारी लिखी है तो थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो आपने तई एक संदेश लिखकर भेजो है, लिखियो है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और सगड़ो वर्मा परिवार, बुर्ज हनुमानगढ़, जिला फाजिलका शू। ए सैशु पहली तो आपने रामा श्यामा लिखी है, और आगा लिखिए प्रोग्राम पेश करने वालन के मारा काने शुं गणिन गणी राम राम, और खेतियों संबंधी जी की जानकारी है बा थे मारते भेजो तो बड़ी अच्छी लागे सा। तो अंगो भी आपने मोकड़ो सारा धन्यवाद रमन वर्मा जी। कार्यक्रम में थे क्या संदेश जो कहना वो आपने इंग्लिश में मंडी है बिल्कुल सा, है ना। एक तो संदेश जो है वो आपने चलत भाषा का वहाँ अंग्रेजी का शब्द ले गए, और बिना हिंदी का वहाँ ही आप मान दिया, लेकिन तो सफा ही अंग्रेजी मान दी सा पण मांडी। इन वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद, क्योंकि जिया जिया श्रोता जो है ना भाई लोगों भी अपना जागरूक हो गया, पढ़े लिखे हो गए भी, हाँ मैं भी की है कह आखिर से कह भी सीख रहा, तो अच्छी बात है सर, है ना। संदेश पुग गया अपना तो सांगली जिला के जत शहर से हूँ, और लिखने वाला है अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किर्त हुजरे, रेहान शेख, और आ लिखियो है कि राजस्थानी भाषा का मान जो थारे कार्यक्रम है बड़ो शानदार है, तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद सा। कार्यक्रम सुनता रहो, पण क्यों ना अपा एक गीत सुन लिया, रामू थारी बाईस के लिया, है ना। लियो थे भी सुनो, इतना हूँ सारो मार लूँ और मेल संभाल लूँ सा।

बिल्कुल सर, रामू थारी 22 के लिए फटफटिया सी ला कर बड़ो गीत हो अच्छो। और अपना ती संदेश पुग्य है और लिखियो है सुरतगढ़ सिंह भूपेंद्र मिशन, परबजोत मिशन और बेबी जानवी का। आ लिखी है लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया के चौपाल पेश करने वाला ना महारा कानी सिंह घड़ी घड़ी रामा श्यामा। तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा के पिछलो पत्रोत्र सुनियो बड़ो अच्छो लाग्यो। लोक भजन लोक गीत जगह है भी बढ़िया हा और प्रोग्राम पेश करना को जो अंदाज है वो पसंद आयो सा। बिल्कुल कार्यक्रम थाने अच्छो लाग्यो इन बातें थारो मोकलो सारो धन्यवाद। और आगे भी यहाँ लिखिया कि शुक्रवार ने गीतारो गजरों में लोकगीत लोक भजन जगह है भी सुनाया बे भी पसंद आया और कह माने थे शामिल करियो इन वास्ते थारो धन्यवाद। तो बिल्कुल थे अपना संदेश मांडो मिशन साहब और बियाँ भी थे सुलझेड़ा इंसान हो थाना तो अब के बता सका कह प्रतिक्रिया जी की है वह थारी बड़ी शांतरी हुए है ना। कार्यक्रम सुनो वो माने पतो है। और आगे भी यहाँ लिखे है कि मौसम बाजार भाव और पशुपालन संबंधी जी की जानकारी अब भी बड़ी पसंद आने आ रही है। और इनके अलावा के आपने मौसम की जी की जानकारी जी की थे दियो ना वाह पहला से अगर थोड़ी सी पतो लग जाए तो बिंगो का फायदो जो है वो हर की नहीं मिल जाए। बिल्कुल आपने जी की जानकारी है वाह भविष्यवाणी जी की है वाह पहला से ही दे जाए। और संगरिया से भी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया से या फिर जयपुर से या फिर आपने गंगानगर से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आवे तो वह धरती पूर्ति कर दे वहाँ सा। और इनके अलावा भी यहाँ लिखे है कि समय समय पर क्या अपने फसलों की जी की बुआई है निराई गुड़ाई है दवाइयाँ कुछ छिड़काव है बिंगी जानकारी जी की दियो वह भी बढ़िया लगे और बड़ी लाभदायक रहे। बिल्कुल आपने जानकारियाँ सुन गए और फायदो जरूर उठानो चाहिए और थाना अच्छी लग गई वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। वो आपने संदेश पुग्यो है भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा और पूजा परिहार ये भी लिखा है कि पेश करने वाला ने महारा कानी से घनी घनी रामा श्यामा। और कार्यक्रम जो है बड़ो शिद्दत से सुन ला रहा हाँ और विशेष करके फरमाइशी गीतों जो को कार्यक्रम है किसान भाइयों को जो कृषि संबंधित जानकारियाँ हैं वे बड़ी अच्छी लगे और गीतार गजरो जो को है वो कह मैं बड़ो विशेष रूप से सुना और आनंद भी उठावा। तो बिल्कुल सा आपने छिंपा साहब कार्यक्रम जो है ना वे हर कोई विशेष रूप से सुने करो ना टाइम निकाल के सुने करो। और थाने गीतार गजरो अच्छो लगे वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। और इनके अलावा मौसम जानकारी जकी है बा भी आना अच्छी लागे और निराई गुड़ाई को जो थे जानकारियाँ दो भी आना पसंद आया तो आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। वो आपने संदेश पुग्या गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश हूँ राम शरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा ये लिखे है का कार्यक्रम मैंने अच्छो लगे सा। तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश हूँ अपने ती जिला मुरादाबाद से मेल मंडी है लिखने वाला है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवीर संजय लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह ये सिर्फ लिखियो है कि कार्यक्रम जो को है वो आने अच्छो लग गया सा।

सतंग जी की बातें हैं भी अच्छी लग गए। तो थारो भी मोकड़ो सारो धनवासा, कार्यक्रम सुनता रहो और सुन के फायदो भी उठाया करो। गांव खोकरा वाली शिव विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा भी अपना तीन मेल मांडियो है और लिखे के रामेश्वर भाई राम राम। तो थाना भी मोकड़ी सारी रामा श्यामा। आगे लिखे कि चौपाल रोजाना सुना घणो दाय है और चौपाल में लोकगीत, लोक भजन, नाटक है, इनके अलावा खेतियों संबंधी चीज की जानकारियां दियो भी माने बड़ी अच्छी लगे। कम ये मूंगी की खेती कर रखी है पर एक समस्या है, मूंगी में हरी सुंडी को प्रकोप बहुत घणो ऐसा, रोकथाम खातर कोई उपाय बताओ। बिल्कुल आपने कार्यक्रम सुनता रहो सा थाना ना मूंगी के बारे में भी जानकारी मैं भी देशा और अपना जगह जाने जान मिनख है, विशेषज्ञ जगह है, बने भी बुला गए अरे मूंगी के बारे में जानकारी देशा। पर एक बार तो की है कि आपने थोड़ा सो मौसम जो है वो नमी को चालन ला रहे है, तभी माँ रोग व्याधियाँ कीटाणु जो है भी लागने की ज़्यादा संभावना रहे। तो कचरो मचरो जो है खेत का माँ खरपतवार हुए भी निकाल के और अपने खेत जो है वो कचरा रहित रखना जरूरी सा, क्योंकि ये जिकी लटा है सुंडिया है ज़्यादा कचरा से ही पैदा हुआ है। और रही बात जानकारी की तो जानकारी थाने जरूर सुना सियाँ, कार्यक्रम सुनता रहियो सा। चक 5 MD पत्रोड़ा से अनूपगढ़ से अपने ती मेलमांडिया मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदू और डॉक्टर सुनील जनागल ए भी का कार्यक्रम जो है वो माना बढ़िया लगा है। और रामा श्यामा लिखी है तो थाने भी मोकड़ी सारी रामा श्यामा। और क्या पिछला सप्ताह का एक नाटक सुनाए हो कै गोपीराम जी कुदारा को लिखड़ो नाटक हो जान यानी बरात, तो बड़ो सामाजिक नाटक हो और बड़ो अच्छो लाग्यो, तो कलाकार ने बधाई। बिल्कुल थारी बधाई जी की अब कलाकार पूर्ति होगी सा और गोपीराम जी को लिखड़ो नाटक जान थाना अच्छो लाग्यो। तो अब क्या ब्याह शादियों को सीजन है और इंगमा की है कह जान भी जावे भी है और जान जी की है अवे भी है सा। मुगलो सर धन्यवाद मेल मंडो सा। ओ गांव पिपेरा सू नरेश घर, कौशल्या देवी धनगर, उषा मनीषा, पूजा पवन गोस्वामी, तोलगर सावित्री गोस्वामी, हाँ रलमिल के लिखे कह चौपाल कार्यक्रम पेश करना महारा खानी सू घणी घणी रामा श्यामा और कह चौपाल में मन बाबा रामदेव जी को भजन सुनाइयो सा। तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा और कार्यक्रम सुनता रहो, थाने जरूर बाबा रामदेव जी को जो भजन है वो सुनने मिलेगो सा। रायसनगर से सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिवप्रकाश, जसवंत राम, सुनील जांगिड़, साहब राम स्वामी, रलमिल के लिखे ऐसा मेल और लिखा है कि पत्र तो चौपाल पेश करने वाला ने रामेश्वर भाई ने घणी घणी रामा श्यामा। तो थाने भी मोकली सारी सगड़ा भाईला ने रामा श्यामा और कह सही राम जी की आवाज़ में भजन सुनाए बड़ो बढ़िया लागो सा। बिल्कुल आपने सही राम जी जगह है लोक कलाकार है और बढ़िया भजन गा है और थाना अच्छो लागो इन वास्ते थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। अगर लिखा कि चौपाल में नवीन जी ने भी सागे ले गया एकरो, तो बिल्कुल आपने नवीन जी जगह है बे आने वाला कार्यक्रम में जरूर सागा सी, पर अब थोड़ा सा कमताली को टेम है जांगिड़ साहब, तो काम धाम जो है वो भी संभालना पड़े। पर हताई की है कि कई बार भिड़ा हो जावा और रल मिल के अपने हठा चौपाल में आ जावा, कदी कदी आपने क्या कहा अकेला भी आ जावा सा है ना, पर थे तो हो ना सागा मारे है ना, आप अकेला कौन नहीं थे भी हो और इन्हें मैं भी हाँ। अगर लिखे कह रमेश जी थारी बोली और थारू प्रोग्राम पेश करने का जो अंदाज है बड़ो निरालो है और बड़ो आनंद आवे, चौपाल में जब थे और नवीन जी कार्यक्रम ले गया हो सा, बिल्कुल थाने दाया सा वो प्यार मोहब्बत ने स्नेह की बात है। कार्यक्रम जो कहे भी जितना भी भाईला है बांगी बांगो पेश करने का अंदाज भी अच्छो है, बांगी बोली जकी है वह भी बड़ी है सा। बोली तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए चाहे थे हो चाहे मे हो, पने थाना अच्छी लागे इन वास्ते थारो मोकड़ो सरो धन्यवाद। अगर लिखे कि चौपाल कार्यक्रम में लोक भजन लोक गीत जो कहा प्रोग्राम पेश करने का अंदाज है वो भी बड़ा पसंद आ रहा है, शुक्रवार ने गीतारो गजरो में लोक गीत लोक भजन सुनिया भी बड़ा पसंद आया, मारो पत्र शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल थे अगर भेजे है संदेश है चाहे मेल है चाहे पत्र है वो शामिल तो हुआ सा है ना। चौपाल में कृषि संबंधित जानकारी, मौसम, बाजार भाव, पशुपालन संबंधित जकी जानकारियाँ, जैविक खेती के बारे में जकी जानकारी दो भी बड़ी फायदेमंद है, आप भी आ बात लिखी है। तो थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो सा। गांव गंदेली सियूँ अपने पलराम स्याग, रमेश, मोनिका, संदीप, भावना और अंगा माता जी है बिमला स्याग और पोतो है राघव स्याग, ये भी कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है कि थारे कार्यक्रम जो है वो बड़ो बढ़िया लगा और इनकी जितनी प्रशंसा करा बीती कम है चलो जब तक आपने दापड़ा नहीं बढ़ तक तो करी देख रो अगर अच्छो लागे तो। मुगलो सर धन्यवाद थारो भी। वो लिखी है अपने मेल और लिखने वाला है धर्म सिंह वाला, श्री गंगानगर से ओम प्रकाश सरवा, बिमला देवी, यशु, विशाल, राजेंद्र कुमार, सुमन देवी, ए भी का चौपाल पेश करने वाला महारा कानी सू घणी घणी रामा श्यामा। तो थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा, आपने ती मेल पुग्यो है और वो लिखर भेजे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी, ये लिखा है कि कार्यक्रम पेश करने वाला महारा कानी सू घणी घणी रामा श्यामा और चौपाल कार्यक्रम का माना बड़ो पसंद आ रहा है, चौपाल में जी की थी जानकारी है तो वे भी बड़ी फायदेमंद हुए और चौपाल में क्या गीतारो गजरो है नाटक।

0: वजन वजन है, बाजार भाव है, या पशुओं के बारे में जिनकी जानकारियां दो, वे भी बड़ी दया वैसा। तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो सा। भेरकला टीबी शू राजेंद्र मोयल, जमुना मोयल, जयपाल मोयल, पूजा मोयल, आरती मोयल, कुलदीप मोयल, ए भी कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है सा। तो आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। और ओ मेल पुग्यू है अमरपुरा जालू खाड़ जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, एक रामेश्वर भाई और नवीन भाई ने घणीन घणी रामा श्यामा का नाटक जान सुनो बड़ो बढ़िया लाग्यो। और कह हूँ का थारो पुराणो श्रोता हूँ, बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो सा, है ना, माने ही चीज़ को बेरो है कथे बड़ा पुराना श्रोता हो और कार्यक्रम थाने अच्छो लग गए, तो इन वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। आगे भी उड़ीक रहेगी सा, पण चालता चालता आप क्यों ने एक गीत को मुखड़ो सुन लिया लियो, थे भी सुनो सा, लेकिन बीच पहले एक संदेश सुना सापा।
1: आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित सेजू, सीनियर पीडियाट्रिशियन बाड़मेर से, जो बच्चों को मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। डॉक्टर, स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं और बारिश का मौसम भी आ गया है, ऐसे में बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं?
2: अधिकतर मामलों में साधारण सर्दी कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सही देखभाल न करी जाए तो कुछ बच्चों में यह जटिलताएं विकसित हो सकती है। जैसे संक्रमण कान तक फैल सकता है जिससे कान में दर्द या कान का संक्रमण हो सकता है, या साइनस तक पहुंच सकता है जिससे चेहरे में दर्द या नाक से गाढ़ा स्त्राव आने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। खांसी बढ़कर छाती को प्रभावित कर सकती है और ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन सकती है। इसलिए भले ही सर्दी आपको सामान्य लगे, लेकिन समय पर देखभाल, बच्चे की स्थिति पर नजर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जटिलताओं से बचाव होता है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो पाता है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल सापा, गीत तो सुन कौन सकान के टेम जो है वो थोड़ो रही है, लेकिन एक चलता चलता मेल बांधते हैं। ब्यासी आरबी राजनगर से चेतनराम सारसवा, नौरंगराम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, एक है कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगा है और थारो जो को अंदाज है वो मैंने पसंद आवा सा। तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद सा, पर आज कार्यक्रम को टेम इतो ही है अपना कन, थारा से लेऊँ गया चालू सा। राम राम सा, राम राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तोता थे रमेश चावरिया। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म राजकुमार। साथियों, शम्मी कपूर, साधना, पृथ्वीराज कपूर और प्राण जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म 1964 की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही। इसका निर्देशन के शंकर ने किया था। कहानी और पटकथा में रामानंद सागर का योगदान था और संगीत दिया था अमर जोड़ी शंकर जयकिशन ने। फिल्म में शाही परिवेश, रोमांस, रहस्य, हास्य और मधुर संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। हमारे आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं सन 1964 की उस संगीतमय दुनिया में जहां शम्मी कपूर की चंचल अदाएं, साधना की मोहक मुस्कान और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत आज भी दिलों पर राज करता है। फिल्म का नाम है राजकुमार। आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की इस गीत के साथ।

साथियों, कहते हैं प्रेम की पहली आहट बसंत की पहली हवा जैसी होती है। मन में अनजानी खुशी भर जाती है और हर ओर रंग बिखर जाते हैं। अभी हमने ये गीत सुना, लता मंगेशकर की मधुर आवाज में सजा ये गीत उसी एहसास को खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। प्रेम में बुलावा शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से आता है। जब कोई अपना याद करे तो दूरियां भी रास्ता नहीं रोक पाती। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत आज भी प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में गिना जाता है।

साथियों, राजकुमार फिल्म में शम्मी कपूर ने राजकुमार भानु प्रताप की भूमिका निभाई, जो आम लोगों के बीच रहकर अपने राज्य के दुश्मनों का पता लगाता है। साधना ने राजकुमारी संगीता का किरदार निभाया, जबकि प्राण ने खलनायक नरपत सिंह की प्रभावशाली भूमिका अदा की। साथियों, इश्क में शिकायत भी होती है और उसी शिकायत में छुपा होता है प्यार का सबसे मीठा रंग। ये गीत प्रेमियों की उसी प्यारी नोकझोंक को संगीत में ढाल देता है।

0: को झेलता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।
1: Thank you.

साथियों, कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। दर्द, तड़प और बिछड़ने की कसक जब रफ़ी साहब की आवाज़ में उतरती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है। ये गीत फिल्म का सबसे भावपूर्ण गीत माना जाता है।

साथियों, राजकुमार फिल्म की सफलता में इसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। शंकर जयकिशन ने हर गीत को अलग रंग दिया और रफ़ी साहब की आवाज़ ने शम्मी कपूर की स्क्रीन पर मौजूदगी को और भी प्रभावशाली बना दिया। फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी होने के बावजूद अपने मनोरंजन और संगीत के कारण दर्शकों की पसंद बनी रही। साथियों, दुनिया बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्चा प्रेम समय की हर कसौटी पर खड़े उतरते हैं। इसी भावना को समेटे हुए है ये खूबसूरत नगमा।

साथियों, शम्मी कपूर, साधना प्राण और शंकर जयकिशन के जादू से सजी फिल्म राजकुमार के ये यादगार गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने 1964 में थे। इसी के साथ एक ही फिल्म से, कार्यक्रम से

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म राजकुमार। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स के इन कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने आज 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा विश्व कप के रोमांच के साथ, जो अपने चरम पर पहुंच चुका है या चरम की सीमाओं को भी पार कर चुका है। अब विश्व कप में महज 3 मुकाबले बचे हैं और हर मुकाबला तय करेगा इस विश्व कप का विजेता कौन होगा। इसी कड़ी में आज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अटलांटा स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे से खेला जाना है। आइए जानते हैं इस अहम मुकाबले में किस टीम का पलड़ा कितना भारी है।
1: अटलांटा स्टेडियम में आज डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच फीफा विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इस बात का फैसला होगा कि फीफा विश्व कप के फाइनल में कौन सी टीम स्पेन से मुकाबला करेगी। ये मैच विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है और दूसरी तरफ मजबूत इंग्लैंड। दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगी लियोनेल मेसी वर्सेस केन बेलिंघम की राइवलरी। दोनों टीमों के अब तक के अभियान पर नजर डालें तो अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसके बाद अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को 3-2 से, फिर प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। टीम की सबसे मजबूत कड़ी लियोनेल मेसी हैं, जो अब तक विश्व कप में 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस को लीड कर रहे हैं। वहीं अर्जेंटीना के सामने इंग्लैंड की टीम होगी, जो ग्रुप एल में शीर्ष पर थी। इंग्लैंड राउंड ऑफ 32 में शानदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से पटकनी दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को 3-2 और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराया था। इंग्लैंड ने इस विश्व कप में दबाव की स्थिति में शानदार वापसी की क्षमता दिखाई है। अर्जेंटीना के लिए उसकी मुख्य ताकत मेसी रहने वाले हैं, जिनको अगर मिडफील्ड से मैक एलिस्टर, एंजो फर्नांडिस और डी पॉल का बखूबी साथ मिलता है तो टीम 1962 के बाद लगातार 2 विश्व कप जीतने पहली टीम बन सकती है। वहीं इंग्लैंड के अटैक में केन, बेलिंघम, साका और गॉर्डन जैसे करिश्माई खिलाड़ी हैं। अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने 6 और अर्जेंटीना ने 3 मैच जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के आंकड़े और संतुलन से एक बात तो स्पष्ट है कि फुटबॉल प्रेमियों को आज रात एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक रोमांचक मुकाबला फुटबॉल प्रेमी

0: प्रेमियों का आज रात इंतजार कर रहा है। और एक ऐसा ही मुकाबला खेला गया कल, जहां स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर विश्व कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: स्पेन फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ये दूसरा मौका है जब स्पेन विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले टीम ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब भी अपने नाम किया था। टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि मुकाबले में पहली सफलता स्पेन के हाथ लगी जब 19 वर्षीय लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिली। मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिशें की, लेकिन टीम स्पेन के मजबूत डिफेंस को नहीं भेज सकी। दूसरे हाफ में पूरी तरह से स्पेन का दबदबा मैच पर देखने को मिला। मैच के 58वें मिनट में स्पेन के पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया। फ्रांस के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेरकी को मैदान पर उतारकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सकी और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा, जबकि फ्रांस की टीम तीसरे स्थान के लिए खेलेगी। फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो 48 टीमें थी, 104 मुकाबले खेले जाने थे। अब 101 मुकाबले हो चुके हैं, 3 बचे हैं, और अगर साथ साथ देखा जाए तो गोल्डन बूट की रेस भी उतनी ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है जितनी ही खिताबी दौड़ है, जहाँ पे एम्बाप्पे 8 गोलों के साथ शीर्ष पर हैं और मेसी भी 8 गोलों के साथ हैं। हालांकि कल के सेमीफाइनल में एम्बाप्पे कोई गोल नहीं कर सके और उनकी टीम फ्रांस का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में आज बहुत अच्छा मौका होगा मेसी के पास कि वो अपनी टीम के लिए गोल करें और टीम को जीत भी दिलाएं, साथ ही गोल्डन बूट की अपनी दौड़ को और मजबूत करने का काम करें। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत ने आखिरकार इंग्लैंड दौरे पर विजय शंखनाद कर दिया है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बर्मिंगम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के 259 रन के लक्ष्य को भारत ने 45 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराकर इंग्लैंड दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की है। बर्मिंगहम के एजबिस्टन में खेले गए मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों की संतुलित गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में 258 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि लियाम डॉसन ने 68 और बेन डकेट ने 43 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्ण और गुरनूर बरार ने 2-2 तथा जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला। 259 रन के जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत के दोनों स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित 11 और कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ 101 रन की साझेदारी करते हुए टीम को वापस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अय्यर 35 रन पर आउट हुए। अच्छे रंग में दिख रहे कप्तान गिल को क्रैम्प की समस्या के कारण 80 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से जाना पड़ा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला।

0: और छठे विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी की और टीम को आसान जीत दिलाई।
1: He does go over the top. He goes all the way for six. Goes to a half century. And the two spin bowling all-rounders for India have seen him over the line. Akshar Patel and Washington Sundar.
0: सुंदर 63 गेंदों पर 52 रन और अक्षर पटेल 52 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और सैम करन ने एक एक विकेट लिया। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाने वाले अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए सुनते हैं इस परफॉर्मेंस पर अक्षर पटेल ने क्या कहा।
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली जिस तरह के T20 सीरीज गए उसके बाद पहला विन, इस तरह का परफॉर्मेंस के बाद जब आता है तो आई थिंक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम यही सोच रहे थे कि बस हम खेलते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते कि उसको टारगेट करेगा, मैं उसको टारगेट करूंगा, क्योंकि जिस तरह के विकेट थे आई थिंक जब आप एक बार सेट हो गए तो आपको वो फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम यही बात कर रहे हैं।
0: अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा, जहां टीम की नजर इस मुकाबले को जीत कर श्रृंखला को अपने नाम करने की होगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: तो शायद कुछ मरहम लगा होगा उन हारों का जो आयरलैंड से मिली, उसके बाद इंग्लैंड से मिली एक शानदार जीत के साथ, और टीम की और खेल प्रेमियों की उम्मीदें भी यही होंगी कि कल कार्डिफ में भी ऐसा ही करिश्मा दोहराया जाए और श्रृंखला अपने हिस्से में की जाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में शानदार बल्लेबाजी का उपहार शुभमन गिल को ताजा जारी ICC रैंकिंग में मिला है। गिल एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और वो पहले स्थान के खिलाड़ी डैरिल मिचेल से मात्र 11 अंक पीछे रह गए हैं, जबकि दूसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर विराट कोहली और चौथे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। और अगर टीमों की रैंकिंग की बात की जाए तो भारतीय टीम एक दिवसीय क्रिकेट में पहले स्थान पर है और T20 रैंकिंग में भारत को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है और भारतीय टीम अपना शीर्ष स्थान गंवा करके दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि फायदा अक्षर पटेल को भी हुआ है और वो 3 अंकों की छलांग लगा करके ऑलराउंडर्स की एक दिवसीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब रुख करते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता का, जहां एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज महिला वर्ग में 3 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: इंडोनेशिया के जकार्ता में खेली जा रही एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 23 वर्ग में भारत की निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में जापान की कोरिन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि नितिका चंद्र ने 60 किलोग्राम वर्ग, काजल ने 65 किलोग्राम वर्ग, मुस्कान ने 75 किलोग्राम वर्ग और प्रियंका ने 80 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक हासिल किए। इससे पहले तनु ने 51 किलोग्राम वर्ग, प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग, शिवानी ने 70 किलोग्राम वर्ग और नैना ने 80 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में कांस्य पदक जीते थे। अगर अंडर 19 वर्ग की बात की जाए तो 51 किलोग्राम वर्ग में भारत की चंद्रिका पुजारी ने उज्बेकिस्तान की नजोकत मर्दोनोवा को 5-0 से और 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची ने इंडोनेशिया की दीरा अर्तिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि गुंजन ने 45 और 48 किलोग्राम वर्ग, जॉयश्री ने 54 किलोग्राम वर्ग, चाहत ने 60 किलोग्राम वर्ग, अंशिका ने 75 किलोग्राम वर्ग, मेघा शियोकंद ने 80 किलोग्राम वर्ग और प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम वर्ग से अधिक की कैटेगरी में रजत पदक भारत की झोली में डाले। पुरुष के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे, जिसमें अंडर 23 में 3 भारतीय मुक्केबाज और अंडर 19 वर्ग में 2 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
3: तो जकार्ता से आए हुए ये परिणाम इशारा करते हैं कि भारतीय युवा मुक्केबाजों का भविष्य कितना उज्जवल है और किस दिशा में जा रहा है, और ये परिणाम अभी यहीं नहीं थमे हैं। कल और मुकाबले खेले जाएंगे जहां 5 भारतीय पुरुष मुक्केबाजों की नज़र स्वर्ण पदक पर होगी, जिसमें विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम वर्ग में स्पर्धा करेंगे, गंगा 55 किलोग्राम में और 65 किलोग्राम में वंशराज नज़र आएंगे स्वर्ण पदक के लिए दाव आजमाते हुए, जबकि आदित्य अंडर 19 वर्ग में 55 किलोग्राम और शुभम राजपूत 90 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में पदक के लिए दाव आजमाएंगे। और अब रुक करते हैं बैडमिंटन का। जापान बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल

0: में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी को आज हार का सामना करना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भी अपने मुकाबले हार कर इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। लक्ष्य सेन को जापान के कोकी वतानबे ने 21-16, 21-14 से हराया, जबकि आयुष शेट्टी को थाईलैंड के कुनलावुत विदित्सन ने 21-19, 23-25, 21-15 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा को चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसन से 21-16, 16-21 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। भारत की जो मुख्य उम्मीदें हैं वो कल के मुकाबलों पर होंगी, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मैदान पर उतरेंगी और अपना प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी, जहां पे उनका सामना जो है वो हुआंग यून से होने वाला है। और मिक्स डबल्स जोड़ी में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी कल अपना मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। तो भारत की पूरी उम्मीदें इस जोड़ी से और पीवी सिंधु से रहने वाली हैं कि ये भारतीय अभियान को किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी दुनिया के खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan@air.gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई U19 और U23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक

0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इंपोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
0: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये

0: अथवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,000

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रही हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मेहदी हसन।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रही हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मेहदी हसन।

0: मेहंदी हसन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: चर्चा का विषय है।
2: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी शुक्रिया,
5: नमस्कार।
3: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
4: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के दौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इनक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और

0: मे बी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है. इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है. एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है. जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से. कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा. दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है. इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में. इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है. तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं.
1: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा. भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कॉम्पोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा. यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा. भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे. समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी. डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई. जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी, क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है.
2: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं. उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है. उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या तलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है. इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा. पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो जो आंकड़े हैं वो जरा समझनी चाहिए. यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है. इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है. तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%. अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के जीरो हो रही है. मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें जीरो हो रही है. इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें जीरो हो रहा है. ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है जीरो हो जाएगा. लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें जीरो हो जाएगा. और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी जीरो हो जाएगा. और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी जीरो हो जाएगा. ये सारे सेक्टर में, जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा कि हमारा शेयर सिर्फ 6% है, वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी. उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है, वो भी बढ़ जा सकता है. ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है. केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है. इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है. ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो

0: काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है, पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त। तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं, उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने की डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स में, और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं, वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है, उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें काफी इजाफा होगा।
1: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारे मादक पदार्थ हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को नुकसान न पहुंचाएं और दोनों देश इससे लाभ भी उठाएं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है, क्योंकि यूके का मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है और उनके जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, खास करके जैसे आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स की बात की है, तो एक बड़ा अच्छा कंपटीशन वो क्रिएट करेंगे। तो उसके दो मायने हैं। एक तो पहला कि हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है तो और ज्यादा कंपेटिटिव बनेगी, हम भी एक कंपटीशन फेस करेंगे और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, जिसको हमने ग्रेजुअली अडॉप्ट किया है। एक कोटा के थ्रू जो टैरिफ है वो एकदम से जीरो नहीं होगा, ग्रेजुअली जाके वो धीरे धीरे करके उनका जो पेनिट्रेशन है हमारी मार्केट में बढ़े। तो इस एफटीए में कोई भी ऐसा नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि वो एकदम से हमारे जो मार्केट है उसको हाई एंड प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे और हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारी इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो पीएलआई है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे एफटीए करने के काबिल बने हैं। आप देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई एफटीए साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने एफटीए शुरू किए, मॉरिशियस से शुरू होकर अभी हम आज यूके इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
0: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है

0: कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की
1: जी
0: उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल कीकृत की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे। अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो हैं और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो को जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
2: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की कि बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी। दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% यूके है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी। उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और ये वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि एफटीए आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर एफटीए की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द एफटीए। अभी एफटीए के बाद आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीए को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ। तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कम्पीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं। जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का, मैं समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और क्या यह सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
0: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है वहाँ पे, जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफी एक धक्का

0: मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ हम लिंक्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक हमने इस सेटा में एक हमारी उपलब्धि ये रही है कि जो सीबैम का जो एक डर था, उस डर में हमारी जो स्टील एक्सपोर्ट्स है उसमें काफी हानि पहुंचने की एक डर था यूके के साथ, पर हमने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग ब्रिटेन के साथ किया है, उसके अंडर हम करीबन 85% जो हमारी स्टील एक्सपोर्ट्स है वो यूके सरकार की जो नई सीबैम की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो क्लाइमेट एडजस्टेड जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो है, सो इसका मतलब 85% हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स है में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 15% एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है, जो 15 से 20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा, ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% है और सर्विसेज जो अनदर 50% है, दोनों की प्रोविजंस की गई हैं। जो चीज इसमें शायद आनी चाहिए थी और भी, वो इन्वेस्टमेंट की थी कि इन्वेस्टमेंट को भी हम कैसे इसको ला सकें, पर हम यही आशा कर सकते हैं जब ट्रेड बढ़ेगा, सर्विसेज ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, तब हमारी यूके और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही हैं, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज़्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और ख़ास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज़्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज़्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे उनका और ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज़्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज़्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारे इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जब प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की, और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की, और उनके और ज़्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो ज़रूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीज़ों में, सब चीज़ों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में, वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज़्यादातर एमएसएमई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती हैं, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए।

0: जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलोंग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी जो पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती हैं वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5 से 10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्राजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हर एक 5 से 7 वर्षों में आगे और डबल हो, और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं, और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको
1: MSME.
2: सपोर्ट करेगा। अब उसका एक डुअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई के सपोर्ट के साथ उनका जो ट्राजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे, तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
0: ये समझौता जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारे जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया, थैंक यू,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और एस.पी. शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज

0: जोन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है
2: आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो मन भवन, निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया, प्रस्तोता स्मृति बोहरा।
3: हेलो मन भवन की प्रस्तुति लेकर आज मैं आपके साथ आपकी दोस्त स्मृति, तो स्वीकार कीजिए मेरा स्नेह अभिवादन। श्रोताओं, प्रभावशाली व्यक्तित्व, अनोखी शैली और अगर दमदार संवाद अदायगी के विषय पर बात की जाए तो जिस अभिनेता का नाम याद आता है वो है शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका आज जन्मदिन है। उनका अंदाज इतना निराला था कि खामोश शब्द आज भी उनके व्यक्तित्व का जादू बिखेरता है। उन्हें आकाशवाणी की तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आज है युवा कौशल दिवस। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता, सही कौशल का होना बेहद जरूरी है, तभी आत्मनिर्भर भारत में हमारा योगदान हो पाएगा। तो चलिए बातों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0150922992 और 0150922093। हेलो मन भवन।
4: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
4: मैम गांव पथरवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से आपका नियमित प्रश्न राजेश कुमार।
3: क्या काम करते हैं आप?
4: मैम मैं ब्लाइंड पर्सन हूं और टीचर हूं।
3: मतलब भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं आप?
4: जी, कोशिश कर रहे हैं।
3: जी, शिक्षक एक ऐसा हुनर होता है जो अपने ज्ञान को कभी अवरुद्ध नहीं होने देता, खुद का भी ज्ञान बढ़ाता है और दूसरों का भी।
4: अध्यापक एक ऐसा आदमी है
3: जी,
4: उसका शिक्षक स्टूडेंट से तरक्की करेगा तो उसको बड़ी खुशी होगी।
3: जी बिल्कुल। कौन कौन से साथी हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में?
4: मेरे साथ विजय सिंह लखेरा जी हैं, रामनिवास अग्रवाल जी हैं, राजेंद्र सैनी जी हैं।
3: जी बिल्कुल। कौन सा गीत आपका मनपसंद है?
4: मैम लता जी की आवाज में फिल्म हम की गजल है कैसे आपने सामने लिखी है और मधुर मोहन का संगीत है। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हनुमानगढ़।
0: हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मैं मेरा नाम लव सोखल है।
0: रेडियो कब से सुनते आ रही हैं आप?
1: 3 साल हो गए।
0: 3 साल हो गए। और आकाशवाणी सूरतगढ़ सुन रहे हैं आप? कौन कौन से कार्यक्रम आपको हमारे केंद्र के पसंद है?
1: मेरे को मैम सभी प्रोग्राम
0: कौन
1: सुन,
0: सा गीत सुनवाएं आपको?
1: नौकर हिलम का फल लटके सॉन्ग।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: हाँ।

0: हेलो मनभावन, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुल्तान
0: कब से रेडियो सुनते आ रहे हैं सुल्तान जी आप?
1: बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
0: अच्छा, कौन कौन से साथी है इस कार्यक्रम में?
1: मेरे लड़के जी हरपंत पनवारी, गोपी, पोता जी ललित, नरेंद्र।
0: अच्छा, आज शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है तो उन्हीं की फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं आपको।
1: ठीक है
0: जी,
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो मन भवन, नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
0: मैं जी गांव बांडीवाला फाजिल्का पंजाब से ओम बगड़िया बोल रहा हूं मैडम जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
0: थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी हमसे बातचीत हो रही है।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लकी समझता हूँ हमारे लिए कि आप आज आए तो हमारा जो फोन लगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना, प्रयास करते रहना चाहिए।
0: हाँ कर रहे हैं मैडम जी, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी हमारा मनोरंजन का साधन है
1: जी,
0: और आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं पूरा दिन, अलग अलग स्टेशनों से प्रोग्राम सुनते हैं। और आकाशवाणी सूरतगढ़ के जो प्रोग्राम है वो हमारी मातृभाषा का चैनल है, इसलिए हमें इसके प्रसारण जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद है आपको?
0: हम यहाँ पर तो आप मानो तो मिट्टी की खुशबू, मन भावन, चौपाल प्रोग्राम, गोरबंद और दोपहर के प्रोग्राम सभी सुनते हैं मैडम।
1: लगभग सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: हाँ जी हाँ
1: जी। मौसम का मिजाज कैसा है वहाँ?
0: मौसम मैडम जी अभी तक कोई खास बरसात नहीं हुई है, लेकिन मौसम कुल मिलाकर इतना ज्यादा गर्म नहीं है।
1: कौन कौन से साथी हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़े?
0: साथी हमारे बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा श्रोता है। सुरेश गोगिनाजिया जी हैं और सुभाष गुदारा जी भी हैं, सुरगिश्राय गर्ग जी हैं मानसा से, और एक हमारा पोता है क्रियांश बगड़िया, ये भी गीत सुनना चाहता है मैडम।
1: कौन सा गीत सुनवाया आपको?
0: अड़ी वे अड़ी लगी सौन दी चढ़ी।
1: अच्छा, मतलब झमाझम बारिश के साथ हो रही है।
0: हाँ
1: जी, बातचीत की बरसात और साथ ही गीतों की फुहार भी है इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल मैडम जी, आजकल तो बरसात के संबंधित जो गीत है वो ही अच्छे लगते हैं मैडम।
1: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं आपको। शुक्रिया।
0: थैंक यू।

0: हेलो मनभावन,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मुरारी शर्मा बोल रहा हूँ, गांव रामपुरा मटोरिया से। दीदी पिछले 10-12 हफ्ते से मेरा फोन नहीं लगा है।
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है कि फिर आज आपकी हमसे बातचीत हो रही है।
1: बिल्कुल समझती दीदी बोल रही हो।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ दीदी,
0: कैसा है मौसम का मिजाज वहाँ पे?
1: बहुत अच्छा मौसम है। 2 दिन पहले खूब बारिश हुई है दीदी।
0: अरे वाह, मतलब झीलें और तालाब लबालब हो गए हैं या अभी भी इंतजार है
1: बिल्कुल,
0: बारिश का?
1: बहुत जबरदस्त बारिश हुई है दीदी।
0: अच्छा, मतलब प्रकृति की पूरी मेहरबानी है आपके यहाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
0: क्या काम करते हैं आप?
1: हम दीदी खेती का काम करते हैं।
0: अच्छा, तो जल संरक्षण, मतलब खेतों के लिए जल संरक्षण के विषय पे आप
1: जल के
0: अपने
1: लिए तो
0: विचार।
1: दीदी हम खेतों में तो डिगियां बनाई हुई है
0: जी,
1: जिसे हम जल भर लेते हैं। अब जैसे नहर चल रही है तो खेतों में पानी की जरूरत नहीं है, डिगी भर रहेंगे। बस
0: हम आशा करते हैं
1: दीदी
0: श्रोताओं की जानकारी भी समृद्ध हो रही होगी।
1: दीदी
0: तो कौन कौन
1: बहुत
0: से
1: पहले
0: साथ?
1: वैसे तो पूरी आकाशवाणी से मिल चुका हूँ, लेकिन आपसे दीदी मैं 2 बार मिल चुका हूँ।
0: अच्छा, जी कौन कौन से साथी हैं आपके?
1: जी मेरा लड़का रमन है, अमन है, रवि है, तनीष है, ताऊ शोलाल जी बेनीवाल है, महावीर लोरा है, गजानंद शर्मा है।
0: जी कौन सी फिल्म
1: दीदी
0: का?
1: फिल्म है? हाँ दीदी मैं फिल्म का नाम बता दूं आपको।
0: जी
1: फिल्म है पिंगलता आसमान, आवाजें किशोर कुमार यलका याग्निक, गीत के बोल है तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में ना मिलेगी।
0: आपकी मनपसंद फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, लीजिए सुनते
1: थैंक यू
0: हैं।
1: दीदी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो मन भवन,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं ये कुलविंदर सिंह अरोड़ा मैडम जी, क्या आरम्भ से जिला श्री गंगानगर से जी।
0: मौसम का
1: हाँ जी,
0: मिजाज कैसा है वहाँ?
1: मौसम तो गर्म।
0: गर्म है वहाँ पे। तो
1: हाँ
0: रेडियो
1: जी,
0: के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सभी सुनते हैं मैडम जी।
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप? आकाशवाणी सूरतगढ़ के जो कार्यक्रम, आप नियमित श्रोता हैं, तो
1: सभी सुनते हैं मैडम जी।
0: आज युवा कौशल दिवस भी है, तो आप हमारे आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: युवाओं को दिया जी, अच्छा युवा अच्छे पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करें, नौकरी के लिए
0: जी, अब
1: पढ़ाई अच्छी करें, वैसे अच्छे काम करेंगे तो अच्छा बता लेंगे जी आगे। हाँ
0: जी, कंप्यूटर या डिजिटल की दुनिया से अगर जुड़े रहेंगे युवा तो।
1: जी, हाँ जी, अच्छा काम करेंगे रखेंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ
0: जी
1: जी,
0: बिल्कुल। तो कौन कौन से साथी हैं आपके साथ?
1: साथ में सुखदीप है, जासदीप है, प्रेमा जी है, राजू जी है, पत्र जी है, गुरदीप सिंह जी है जी।
0: कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: मैम जी कोई सावन के पर ही सुना दे, कोई सावन आने वाला।
0: आज शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन भी है, तो उन पर फिल्माया गया कोई गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, उसको सुना दे।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। बातचीत को यहीं देते हैं विराम और लीजिए सुनते हैं ये गीत।
1: शुक्रिया मैडम।

0: हेलो मन भवन।
1: हेलो मन भवन, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं गुजरात से धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं और आकाशवाणी सूरजगढ़ और आप सभी से कुशल होंगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी,
0: तो कैसा है मौसम गुजरात में?
1: मौसम देखा जाए तो बादल थोड़े हैं, थोड़ी धूप निकली है और बारिश की फिर भी आवश्यकता है क्योंकि बारिश जो हुई है 10-15 दिन हो गए हैं तो अभी भी बारिश की जरूरत है।
0: जी बारिश बहुत ही जल्द ही पहुंचने वाली है वहाँ। कौन कौन से साथी हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में?
1: हमारा एक ग्रुप है दीदी, आकाशवाणी फोन इन उत्तर ग्रुप, जिसमें भारत भर के श्रोता जुड़े। मेरे ख्याल से ऐसा एक ही ग्रुप है जिसमें फोन इन की विगत हम शेयर करते हैं और प्रसारण समय भी देते हैं और सजीव फोन इन उनका भी माहिती शेयर करते हैं और रिकॉर्डिंग कार्यक्रम की यानी माहिती शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसमें गुणवंत भाई कड़ू है, गौतम रायबुले जी, तुकाराम यादव जी, गंगाधर सावरकर और लोकेश वर्मा और सारे भारत के श्रोता और आप भी शामिल हो गए इस गाने में।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी पसंद का कौन सा गीत हम सुनवाएं आपको?
1: गाना सुना है अखियों के झरोखे से।
0: अखियों के झरोखे से, बहुत ही बेहतरीन गीत चुना है
1: हाँ
0: आपने।
1: हाँ दीदी, और हमारे कृष्ण कुमार

0: हेलो मन भवन,
1: प्रीति बोरा जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: गांव खोकरा वाली से विनोद बड़ा सा बोल रहा हूँ।
0: जी। विनोद जी कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया। आज आपसे बात हो रही तो और भी बहुत अच्छे होंगे।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ आपके केंद्र का।
0: जी जी बिल्कुल। और फोन पर बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आ तो बहुत खुशी हुई बहन जी।
0: क्या काम करते हैं आप?
1: खेती का काम करता हूँ बहन।
0: तो जल संरक्षण को लेकर आपके क्या विचार है, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बारिश होने वाली है और हमारे श्रोताओं का हम ज्ञान बढ़ाना चाहें।
1: बारिश का तो अब 15-20 दिन हो गए हमारे यहाँ हुई नहीं है। पहले तो बहुत हुई थी और खेतों में भिजांत वगैरह भी होगी, और अब
0: जी
1: फिलहाल 15-20 दिन हो गए बरसात नहीं हुई अभी। और वैसे मैं कहूँगा कि अब बरसात होने वाली है तो श्रोताओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
0: जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। कौन कौन से साथी हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में?
1: परिवार के सभी साथी हैं, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, और आज हमारे नई साथी हैं जो वेद मिंडा जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आपके सभी साथियों की और आपकी फरमाइश का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: एक कुमारी एक कुमारा मूवी का गीत है किशोर कुमार की वाली, दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।

0: हेलो मन भवन,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: बहुत
0: कौन?
1: धन्यवाद, मैं प्रतील राउत से राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी।
0: राजेंद्र जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत।
0: जी। कब से सुन रहे हैं आप?
1: 2003 से रेगुलर सुन रहे हैं अभी, प्रोग्राम अच्छे लगते हैं आप।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हम तमाम कार्यक्रम सुनते हैं, लोमन भवन, गीत गंगा, गोरबन, चौपाल, यू वाणी, खेत कल्याण, कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ते आप। गीत बार, गीत माला, वंदना से लेके सारे प्रोग्राम।
0: तो नियमित श्रोता है आप, तभी आप लिस्ट आपने बता दी है कार्यक्रमों की।
1: जी, हम तो जो आपके कार्यक्रम सुझाव भी देना चाहेंगे, जो कार्यक्रम बाल बाटी जाता था वो बंद कर दिया आपने, अपने निवेदन है कि दोबारा शुरू किया जाए। वो कार्यक्रम बचपन से सुनते थे, बाद में बंद हो गया।
0: जी, हम बिल्कुल इस कार्यक्रम के लिए आगे बात करेंगे। कौन कौन से साथी है आपके साथ में?
1: जी, मेरे साथ मेरी वाइफ है चंद्रकला और मैं, हम दोनों मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की शक्ति में।
0: शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है, उनकी उन पर फिल्माया गया कोई गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी, शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है, उन पर फरमाया कोई भी गाना सुना देना।
0: दोस्ताना फिल्म
1: धन्यवाद।
0: से शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो मन भवन,
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गजानंद धनुष सर
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जीने की राह।
0: जीने की राह फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं आपको। धन्यवाद।

0: हेलो मन भवन।
1: हाँ जी हेलो जी मन भवन जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप
1: जी? मैं गांव बनवाड़ा हनुमता फाजिलका से विनोद माइल बोल रहा हूँ।
0: क्या काम करते हैं आप
1: जी? मेरा टेर पैर का काम है जी।
0: तो रेडियो कब से सुनते आ रहे हैं आप?
1: 1995 से सुन रहा हूँ जी।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: भक्ति संगीत जो चलता है पहले वो जी वंदना, उसके बाद जी बहनों के लिए मंगलवार को प्रोग्राम आता है जी घर आंगन, वो बहुत बढ़िया लगता है
0: जी।
1: और गोरबंद मिट्टी खुशबू।
0: कौन कौन से साथी है आपके जिनका आप नाम लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: जी मेरी घरवाली है शिमला
0: जी,
1: और मेरे बच्चे हैं लक्ष्मीता यशिका और माता है विजय देवी।
0: आपकी पसंद का कोई गीत आप?
1: मदर इंडिया फिल्म का गीत है जी, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं
1: जी। जी शुक्रिया।

0: हेलो मन भावन,
1: हाँ जी नमस्कार जी। सुरिंदर सिंह बोल रहा हूँ अजमेर से।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत गर्म है, बारिश हो नहीं रही है।
0: अच्छा, बारिश जल्दी होगी। अभी दक्षिण भारत में तो मानसून

0: पहुंच गया है जल्दी उत्तर भारत में और भी जगह बरसेगा
1: हम तो ये कहें कि जल्द से जल्द राजस्थान में भी बारिश हुए।
0: जी। रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: मैं रेडियो सुन रहा हूँ 1990 से।
0: अरे वाह, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के?
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के करीब करीब सब प्रोग्राम सुनते हैं हम।
0: जी
1: आपका सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो है ना, वो सुबह जो आता है ना भक्ति संगीत,
0: जी जी
1: इतने चैनल आ राजस्थान में, कहीं से भी उसका मुकाबला, आपके यहाँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम करते हैं आप?
1: सर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ।
0: जी, आज युवा कौशल दिवस भी है, तो आप हमारे युवाओं को रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम रेडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा अपने पढ़ाई, अपने करियर और आगे से आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश की जाए।
0: जी बिल्कुल। कौन कौन से साथी हैं आपके इस कार्यक्रम में जिनका नाम लेना आप चाहेंगे?
1: जितने दूर दराज जो बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो सभी हमारे साथी हैं।
0: जी, आपने सभी को साथी बना लिया। जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं हम आपको?
1: हमारी पसंद का एक बहुत प्यारा गीत है, रिमझिम गिरे सावन।
0: सभी साथियों को पसंद आएगा ये सदाबहार गीत।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं?
1: बिल्कुल, रेडियो नॉन स्टॉप चलता है जब तक नींद ना जाए।
0: और सूरतगढ़ के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सूरतगढ़ के सभी कार्यक्रम, फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं या कोई एक कलाकार प्रोग्राम है या हेलो मन भावन है, बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। आज ही जो अनाउंसर थे सुबह, उन्होंने बहुत ही मीठे प्यारे गीत सुनवाए, आनंद आ गया।
0: आपकी आवाज बड़ी मीठी है, तो कौन सा गीत सुनवाए आपको, आप गाकर बताइए।
1: गीत बताने से पहले मैं आपको अपने दोस्तों के नाम
0: जी जी
1: बताऊंगी,
0: बिल्कुल
1: हालांकि मेरे को डर भी लगता है दोस्तों के नाम बताने में, क्योंकि कोई एक का भी नाम छूटता है तो वो नाराज हो जाता है और नाराजगी किसी की अच्छी नहीं होती। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं सभी दोस्तों को शामिल कर सकूँ। सबसे पहले कोटा से कविता, आप लोगों के प्रोग्राम नॉन स्टॉप होते हैं मेरी तरह।
0: जी।
1: पुणे से अर्चना खानिकर, इंदौर से वंदना, और आपके राजस्थान से ही भूपेंद्र जी, मधु, शोभा, ये सब आप लोग को सुनते हैं। दूसरा अंबिकापुर से चरणदीप रैना जी, और रायगढ़ से प्रशांत मिश्रा, आप सबके नियमित श्रोता है ये सब। और
0: जी
1: मैं इन सब के लिए एक गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: जी
1: ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाती है, और आपका केंद्र सुनकर हम और केंद्र भूल जाते हैं।
0: अच्छा, बहुत ही मीठी आवाज़ में गाया आपने, और आपकी मीठी आवाज़ में हम इतना खो गए थे कि हम अब आपके साथियों के नाम आपसे बाद में पूछते, पहले हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते थे। जी
1: चलिए,
0: बहुत ही अच्छा गीत गाया आपने।
1: होप आप हमारी पसंद का गीत सुनवाएंगे, हम इंतजार रहे।
0: जी बिल्कुल, लीजिए सुनते हैं
1: जी,
0: आपकी
1: आपसे बात
0: पसंद का।
1: करके बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू।

0: हेलो मन भावन,
1: हेलो मन भावन
0: आप कौन बोल रहे हैं और
1: जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं मोनिका बोल रही हूँ, शिवपुरी से। बस
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप लोग को सुनते हैं, आप लोगों की पसंद के गीतों का आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है।

0: हेलो मन भवन,
1: भवन कार्यक्रम। स्मृति मैम जी नमस्ते। राम राम साहब
0: नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
0: जी संतोष जी, आपने पहले इस कार्यक्रम में फोन किया है?
1: जी, 2 साल पहले इस कार्यक्रम में हम हिस्सा ले चुके थे।
0: 2 साल पहले, मतलब

0: काफी समय बाद आपका आज फोन लगा है।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी,
0: तो पहले तो आपको बहुत
1: हाँ
0: बहुत शुभकामनाएं कि आपका फोन लगा।
1: जी, हाँ जी, क्योंकि आपके कार्यक्रम सभी हम सुनते हैं, मिट्टी की खुशबू, गुरुबंद वगैरह, गीत बहार, सभी सभी कार्यक्रम आपके सुन लेते हैं,
0: जी
1: और
0: आप
1: आपके सभी कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं। और इस फोन इन कार्यक्रम में आज आपसे बात करने का मन किया, तो ट्राई किए तो लग भी गया।
0: जी धन्यवाद। सबसे ज्यादा कार्यक्रम कौन सा पसंद है आपको?
1: सबसे ज्यादा कार्यक्रम तो अपने राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित जो है वो भी अच्छे लगते हैं, युवाणी के कार्यक्रम भी सुन लेते हैं, और ये सुबह के प्रसारण के गीत बहार वगैरह, और ये मिट्टी की खुशबू वगैरह सभी सुन लेते हैं, गोरबंद वगैरह।
0: कौन कौन से साथी जुड़े हैं आपके इस कार्यक्रम में?
1: हम खडसे परिवार के सभी सदस्य हैं, और हमारे साथ में हमारे मित्र हैं नारायण गायकवाड़ जी, अभिजीत गभानकर जी, और बहुत सारे श्रोता साथी हैं।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनवाया आपको?
1: आज गीत हम पसंद कर रहे हैं किशोर कुमार जी की आवाज में है, फिल्म का नाम है और कौन।
0: बातचीत को अब यहीं विराम देते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया और क्षमा चाहते हैं उन श्रोताओं से जिन्होंने फोन करने का प्रयास किया और उनका फोन लगा नहीं। हम करपद निवेदन करते हैं हमारे श्रोताओं से कि एक महीने के नियम की पालना करें और आप बड़ी शिद्दत से हमारा ये कार्यक्रम सुनते हैं, हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक थे नवीन सिसोदिया। तकनीकी सहयोग हमें मिला कप्तान सिंह जी, ओम जी वर्मा, जितेंद्र जी और ट्रांसमीटर से महावीर जी का। और अब अपनी रेडियो सखी स्मृति को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हेलो मन भवन। निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया, प्रस्तुता स्मृति पोहरा। हम आकाशवाणी
2: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
3: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। एनडीडीबी मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।